संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत

असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाय संत पापी पाप असंत कूड़े आए फिर संत मलेर मल पाख है असंत निंदक करें पा नानक नीच कह क्या मारे न जा माते जो सुख पावे सही फली पाए सदा सलामत संत नाम गम गम।

भौ निर्वै अकाल मूरत अजुनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी।

अशांत मूर्ख अंत घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे फिराए अशांत मलेर मार पाए अशांत निंदक करे पा नानक नीच कहे क्या मारे न जान देख जो कुछ पावे सही परिपाक।

जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। जा गुजरी महला पंजवा।

भजन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औकत साधक मात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनू दान, मंथन रंग रति रंगे कै, नानक जन कै बिरत विवेकै, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परै न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का

वर्तना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहुपाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपी एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महोदास तपी सर थीवे अगन माए होमत प्राण कनिकसव है वर भूमदान न्यौली कर्म करे बहुआसन जैन मार्ग संजमत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तौ पी होमे मैल न जावे हर के नाम समसर कछनाए नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर दे छुट्टै गर्व गुमान मन ते हुट्टै सोच करे दिन सरात मन की मैल न तंते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबू न बिकिया टरे जल तू वैभव दे अनीत शुद्ध का हुई काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच बहुत सियाण पजम का भव व्यापै अनिक जतन कर तृष्ण ना त्रापै भेख अनेक अग्नि बुझै कूट पाव दुर्गह नहीं सिजै झूठ सुनाई उपयाल मोह व्यापै माया जाल अवर कर तू सगली जमडाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जप दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार

सा संगी हो मैं चूरै। जे को जन मरण ते डरै सा जना की सरनी परै। जिस जन को प्रदर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान सा सुन जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा सू गणी है सब ते उच्चा। जाका मन सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पेख है सगल शिष्ट साजना। सुख दुख जन समृष्टिता नानक पाप उन्नी लिपा। निर्धन को तन तेरु नाऊ निथावे को नाव तेरा थाऊ। निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देव दान। करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जानू आपे अपन संगा प्रभराते। तुमरी उष्ट तुम ते होए नानक वर न जान सकोए। सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उत्तम मैं उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस रसन बखानी।

की प्री सुखदाई कर कृपा नानका भले लाई मिथिया तन तन कुटम सुबाया मिथिया हो मैं ममता माया मिथिया राजो बंतन माल मिथिया काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती यशो वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता मिथ्या त्रुमुह अभिमान मिथ्या पशु प्रकर्त गुमान अस्त्रिपग साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्व को हिरे मिथ्या नित्र पेकत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजनन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तनी पर उपकारा मिथ्या बासलित विकारा बिन बुझे मिथ्या सपै सुबल दे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुकावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बृथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बृथे सब काम जो कृपण के निरार्थ दाम धन धन ते जन जी कट बसु हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ रह तवर कचवर कमावत मनि प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु परबीन बाहर भेख न काऊ पीन अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन्म में मरे जिसके अंतर बसाय निरंकार जिसकी सीख तरह संसार जो तुम पानी तिन प्रभ जाता नान कुंजन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सुब जाने अपना किया आपे माने आपे आप आप करत न बीरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नीरा उपाव सियान सगल तिरैत सब कर जाने आत्म की रैत जिस भावै जिस लय लड़ लाए तान तनंतर समाय सो शिव जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ति अमृत काहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावै तिसको सिमृत परम गत पावै जे प्रसाद वसै सुख मंदर तिसे त्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्या कतवर लुभावै जे प्रसाद सुख से सुविजय मन आठ पैर ताका जस गा विजय जे प्रसाद तुझ सब को मान मुक्ता को जस रसन बखाने जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म रब जी जब दरगह मान पावे नानक प्रचिति कर जावे जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लाव तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल चिदर ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके जे प्रसाद तुझको न पहुंचे मन सा सा सिमरो प्रभु उचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद भूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद सो हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न विसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रवे अपने मना जिन तेरी मन बंट बनाई उठत बैठ सत्य सत्याई तिसे त्याई जो एक अलख्याई हाँ उहा नानक तेरी रखा जे प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद हुआ चार व्यवहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरे सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरे निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करण नाथ जे प्रसाद पे कह बिस्मा जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभु त्याग गौर कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ दुता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तुम पावन साथ रे मन मेरे तुम ता सुराज जे प्रसाद सबकी गत हुए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सुहर गुण गाओ
प्रभु कृपा ते हुए प्रगाढ़, प्रभु दया ते कमल बिगास, प्रभु सुख प्रसन्न बसह मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम हुए, सर्व निदान प्रभु तेरी माया, प्रभु कछु न किन्हु लया, जित जित लाभ तित लग गए हरनाथ, नान किन कह कछु नाथ, श्लोक अगम गाद बार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साजना की चर्ज कथा अष्टपदी, साध के संग मुखो जल होत, साध संग मल सगली को, साध के संग मिटै अभिमान, साध के संग प्रगट है सुज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत नबेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा वरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा ब्रह्म है समानी, साध के संग गोचर मिलाय, साध के संग सदा प्रफुल्लय, साध के संग आवे बसपंचा, साध संग अमृत रसपुंचा, साध संग हुई सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कतुमता वै, साध संग स्थित मन पावे, साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन समीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यो नि बैरु, साध संग न भीगा बैरु, साध संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध संग नाही हाउ ताबु, साध संग तजै सब आप आपे जाने, साध बढ़ाई नान साध प्रभु बने आई, साध संग न कबूता वै, साध संग सदा सुख पावै, साध संग बस्त गोचर लह, साधु कै संग जर सह, साध के संग बसै थान उच्चै, साधु कै संग महल पहुँचै, साध के संग जड़ै सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साध के संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्व थान गामू, नानक साध के संग सफल जनामू, साध के संग नहीं कछ का हाल, दर्शन भेट तो होत निहाल, साध के संग कलुख तहरै, साध के संग नरक पर हरै, साध के संग यहाँ उहाँ सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छा सुई फल पावै, साध के संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रित बसै, नानक कुदरै, साध सुन रसै, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साधक संग न मंति बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साधक संग लगै प्रमीठा, साधु कै संग कट कट डीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी, साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जानै, जिता सुनै तिता बखियानै, साधक उपमा ते गुण ते दूर, साधक उपमा रही भरपूर, साधक शोभा का नाही अंत, साधक शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा उचते उची, साध की शोभा मूचते मुची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे किस बिन कोय, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक, जैसे सूर सर्ग को शोक, ब्रह्म ज्ञानी के दृढ़ समान, जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह तीरज एक, ज्यो बसदा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाऊ, नानक ज्यो पावक का सह सुभाउ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगासु, जैसे तारू पर आकाशु, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मन अपना है, सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए, नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, तुमरस ब्रह्म ज्ञानी चीन्ना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म त्याहानु, ब्रह्म ज्ञानी को प्रयासु, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी सुमाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार,
ब्रह्मज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्मज्ञानी अहंग बुद्धि आगत, ब्रह्मज्ञानी कमन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी

नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलो कुरता रह जो अंतर नाम सर्व में पिख है भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार है नानक पर सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या ना ही रसना पर सुमन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रै रूप न पिख नेत्र सात की तैर संग हेत कर न सुन काहू की निंदा सब ते जान आपस को मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हर मन की वासना मन ते टर इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मध्य को वैसा पर वैष्णव सोजे सुपर सुपर सन विषम की माया ते हो भिन्न कर्म करत हो वह नि कर्म तिस वैष्णव का निर्मल धर्म का उल की इच्छा नि बाचे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब पर हुवत कृपाल आप दिडैवरै नाम जपावै नानक वैष्णव परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिन सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म सास पापा मलक हुवै तिस भगवती की मत उत्तम हुवै भगवंत की टहल करे नितनीत मन तने अर्पै विष्ण प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रभु दै राम नाम आत्म है सो दै राम नाम सारस पीवै पंडित के उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद प्राण स्मृत बूझे मूल सुख मैं जाने स्थूल चौ वर्ण को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वर्ण मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत हुए सासंग पावै जन को ए कर कृपांतर उतारै पश प्रेत मूत पात्र को तारै सर्व लोक का उखद नाम कल्याण रु मंगल गुण गाम काहु जुगत कितै न पाई है धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सतराम दास आत्म राम कृष्णद्री आया दास संतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे सगुर संगा तुम उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु किया क्या तुम हितावै जीवन मुख सो गावै तैसा तैसा सो सदानंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत ऐसी भी खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रख तैसा तिन्नाओ आपे करण करावण जो प्रभाव है सोई फुन होग अश्रुआप अंतरंग लखे न जाही पार ब्रह्म के रंग जैसी मध्य तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता बिना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तुत करे अनेक जानंत न पार अवार नानक रचना प्रभ रची बहु विदनक प्रकार अष्टपति कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट वन प्रमय उदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपीश्वर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते कंत न पाव है कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट पेगात्म निकोर कई कोट पर दर्व को हिरे कई कोट पर दुख न कराए कई कोट माया श्रमाए कई कोट पर देश परमाए जित जित लाभ तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट से जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पात्र बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्य सून कियतर कई कोट देव दान इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूतार है नानक जी जिस पावै तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र कई कोट के रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत्र कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जग किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रे शुकर मिर्गा सब ते निरह सब ते दूर नानक फलित रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव है मरह कई कोट भोजूनी फिरह कई कोट बैठत ही काहे कई कोट काल थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय पाण तह तैरा के नानक सब किस प्रभ कह हाथे कई कोट भय वैरागी राम नाम संग तिन लिवलागी कई कोट प्रभ को जंत आत्म पार ब्रमलांते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग तिनको आप सुप्रसन्न नानक तेजन सदा धन धन कई कोट कहानी अर कांड
कई कोट काश ब्रह्मांड कई कोट कोई अवतार कई जुगत किन्नु विस्तार कई बार पसरु पासार सदा सदा के कंकार कई कोट किन्ने बपात प्रपति हुए प्रमाश माता कंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रसोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हुवता तुम प्रगास कई कोट तत् के बेते सुधा निहार है कु नित्रे कई कोट नावरस पीव है अमर पैसा सदे ही जीव है कई कोट नाम गुण गावे तुमरा सुख सह समावे अपने जन को सास सास समारी नानक परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभे कह दुसर नाही कोई नान तिस बलिहार न जल थल महील सोय अष्टपति करण करावन करण जोग जो तिस पावे सोई होग किन में थाप थापन हार अंत ने किच पारा वारा हुक्मे धार धर रहा वै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे निकरंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक समय रिहा समाई प्रभावै मानुकत पावै प्रभावै ता पात्र तरावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै ता हर गुण पाखै प्रभावै ता पत सुधारै आप करै अपन बिचारै दुआ सिरें काप स्वामी के लै विकसे अंतर जामी जो पावै सुकार करावै नान दृष्टि वरनायावै कहो मानुख ते क्या होयावै जो तिस भावै सोई करावै इसके हाथ होय ता सब किछ ले जो तिस भावै सोई करे अनजानत विख्या मैं रचै जे जानत अपना बचै परमे भूला दै तिस धावै निमक माए चार कुंठ फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत नानक ते जन्ना मिले किन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब नवाज जा का दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दै तिस प्रगटावै जाकू अपनी करै बख्शीस ता का लिखा न गनै जगदीश जियो पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणता बनाई नानक जीवै दिख बढ़ाई इसका बलना ही सहाथ करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावै सोई पंथियो कबू ऊच नीच मैं बसै कबू सोग हर करंग हसै कबू निंद चिंद बिहार कबू बकास पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कबू नृत करै बपात कबू सोए रह दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू हुए बह बड़ राजा कबू पेकारी नीच का साजा कबू अपकीर्त में आवै कबू भला भला कहावै जो प्रवरा कहते ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबू हुए पंडित करे बख्यान कबू मुन धारी लावै ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिर साधिक विज्ञान कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया अनिक जोन भरमै परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावै जो प्रभावै तिवै नचावै जो तिस भावै सूई हुए नानक दूजा अवर न कोई।

ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नामृत्ते करंग सदा बसे पार ब्रह्म के संग, ज्यों जल में जल आए कटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पय विष पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सत कुरबान। श्लोक सुखी बसे मस्कीनी आया पनिवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसका अंतराज अभिमान सो नरक पाती हुवत स्वान, जो जाने में जो बनवंत सो हुवत विष्टा का चंत, आपस को करवंत कहा वह जन मर बोजुन ब्रह्मा वह धन पूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख कंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे, नानकिया मुक्ता गय सुख पावे, धनवंता हुए कर

जपै नानक मन प्रीत सलोक संत शरण जो जन परै सूजन उतरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदि संत कै दुख नार जा कटै संत कै दुखन जमते नी छुट्टै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुख नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा तेहीन संत के हते को रखै न कोई संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संगिन दुख भीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जून लवै संतन कै दुखन सर्प जून पाए संत कै दुखन त्रिगत जून किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा में जलै संतन कै दुखन तृष्णा में जलै संत कै दुखन सब कुछ लै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का ता को नाहि ना संत पावै तां भी गत पाहि संत का निंदक मात ताई संत का निंदक टिक न पाई संत का निंदक महतियारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख में दोग नान संत पावे तो उसका भी होए मोग संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै का नहीं मित्र संत के दुखी को डान लाग गए संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा बिकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख न सुख ते डरे संत के दुखी को ना ही टाओ नानक संत पावे तां ले मिलाए संत का दुखी अत बीच ते टूटे संत का दुखी किते काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोता जो सास बिना मृतक की लोता संत के दुखी की जड़ किछ नाहि अपन भी जप ही काहि संत के दुखी को वरन रखनहार नानक संत पावे तां ले उबार संत का दुखियों बिललाए ज्यों जल विहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यों पावक इंदर नहीं थापै संत का दुखी चुटै केला ज्यों बवाड़ तिलके तमाहि दुहेला संत का दुखी धर्म ते रह संत का दुखी सदमिथिया कहत किरत निंदक का धुर ही पाया नानक जूठ पावै सूई थया संत का दुखी बिगट रूप हो जाए संत के दुखी को दर गय मिलै सजाए संत का दुखी सदा सहकाइय संत का दुखी न मरै न जीवाइय संत के दुखी की पुजै न आसा संत का दुखी उठ चलै निराशा संत का दुख न तुष्ट कोई जैसा पावै तैसा कोई होए पया किरत न मिटै कोई नानक जाने सच्चा सोए सब घट तिसक्यो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की स्तुति करो दिन रात सहते आओ सास गिरास सब कछ वर्तै तिसका किया जैसा करे तैसा कुछी अपना के लाभ करने हार दूसरा कौन कहे विचार जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़भागी नानक जन से श्लोक तजो से आनब सुरजन हो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी मानुकी टेक वृथि सब जान देवन को एक भगवान

सह सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर्ग है नानकू चिल मथा बड़भागी तीजन जग माहे सदा सदार के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तनवंत गनी संसार मंथन।

जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक ने निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपन आप सुजे, तिसकी जानो तृष्णा बुझे, सात संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, अनदिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जे जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर ब्रह्म वंचित आवे, सो संत सुवेला नहीं डुलावे।

सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जन हार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गाढ़न हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप अपन किया कछु न होए जे सौ प्राणी लोचै कोय तिस बिना ही तेरे किछ काम गत नानक जपे करना रूपवंत होए नाही वो है प्रभ की जो सगल कठ सो है धनवंता होए क्या को गर्व है जा सब किस तिसका दिया दर्व है अत सूरा जी को कहावै प्रभु की कला बिना कहता वै जी को हुए बह दाता किस दिन हार जाने गावा जिस गुरु

प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है, जो अंधकार दीपक प्रगास, गुरदर्शन देख मन हुए विगास, जो माव ध्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे, तिन संतन की

प्रभु लिखे का लिखिया पाई है। दुख सुख प्रभु देवनहार, अवर त्याग तू सहचतार, जो कछ करे सोई सुखमान, भूला काहे फिरह अजान, कौन बसताई तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हृदय माहे, नानक पद चेती कर जाहे, इस वखर को लैण तू आया, राम नाम संतन कर पाया, ताजब मान लिहो मन भूल, राम नाम हृदय महतूर, लाद खेप संतै संचाल, अवर त्या बिखिया जंजाल, धन धन कह सब कोए, उख उजल हर दर गै सोए, इहो वापार विरला वापार है, नानक ताके सद बलिहार है, चरण साध के तुय तुय पियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की तूर करो इस नाम, साध ऊपर जाइए कुर्बान, सा सेवा वट भागी पाइये, सा संग हर कीर्तन गाइये, अनिक बिघन ते साधु राखै, हर गुण गाय अमृत रस चाखै, उठ गई संतै दरियाया, सर्व सुख नानक ते पाया।

कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सूजन निर्मल थिया, जाके मन गुर की प्रतीत, इस जने आवे हर प्रभु चीत, भगत पग सुनिए तिहलोय, जाके हृदय को होय, सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत, साची दृष सचा आकार, सच वर्तै साचा पासा, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता, सलोक रूप न रेख न रंग किच, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिसो वै सुप्रसन्न, अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मै राख, मानुकी तू प्रीत त्याग, किसते पर नाही किछ कोए, सर्व निरंतर एको सोए, आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद, साध तेरे की चरणी पाओ, नानक कै मन हो अनुराऊ,

किसका मंत्र न जाने हूर अनदुरू मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए करता कै राज में राज जोग में जोगी तप में तपीश्वर गृष्ट में भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाही सगल देव हारे अब गाहे पिता का जन्म की जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जिंदास नाम त्या वैसे त्यो गुण में जाको परमाई

नाना बिद कर बणत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब घट तिसके सब तिसके ठाऊ, जप जप जीवै नानक हर नाऊ, नाम के तारी सगले जंत, नाम के तारी खंड ब्रह्मांड, नाम के तारी सिमृत वेद पुराण, नाम के तारी सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारी आकाश पाताल, नाम के तारी सगल आकार, नाम के तारी पुरिया सब पवन, नाम के सांग उतरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, रूप सत जाता सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सतपुरख प्रभ सब माहे समाणी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सफली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नान गुर ते पाय, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कै हृदय प्रवेश, सत निरत बुझै जे कोए, नाम जपता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिरसो करने हार, अवर न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष भावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बुझै तिसाया स्वाद, प्रभ कै रंग राजन रहे, गुर कै वचन पदार्थ लहे, उदाते दुकटनार, जाकै संग तरै संसार, जन का सेवक सोवड भागी।

सी पे सच वस्तपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभगता सुरत सत सत जस सुनता बुजनहार को सत सब हुए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पुछानिया जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पै ते निरभउ होए बसाना जिस ते उपजिया तिस महे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको भिन न कहना जाई बुझै बुझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को

अपने शिव की आप पत रखै, ताकि गतमित कोई न लखै, प्रभु के शिव को न पहुँचै। प्रभु के शिव पूछते उच्चे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दा जिस प्रगटाया, निकी कीरी मैं कल रखै, भस्म करै लश्कर कोट लखै, जिसका सास न काढ ताप, ताकू राखत देकर हाथ, मानस जतन करत बपात, जिसके कर्तव्य बिरते जात, मारन रखै वरन कोए, सर्व जिया का रखा सोए, काहे सोच करै रे प्राणी, जप नानक प्रबल।

प्रभु अपने सो रहे सुमाई जो हुआ हुवत सो जाने प्रभु अपने का हुक्म पहचाने तिसकी महिमा कौन बकानू।

जिन जिन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे, अवर सियानुप सगली चाड, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, सलोक सतगुर के जिन जाने आ, सतगुर तिसका नाओ, तिसकै संग सिखुद रै नानक हर गुण गाओ, अष्टपदि सतगुर सिक्की करै प्रतपाल, सेवक काओ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिक्के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिख कौ नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे, सतगुर सिक्का हलत पलत सुवारै।

सहे, आपस कौ कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बिचै सतगुर के पास, तिसे भक्ति कार्ज रास, सेवा करत हुए निकामी, तिसको होत

मातले बीस बिस्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्वनिदान जी का दाता आठ पहर।

पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर गह गवे, सुनकर बचन करन आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखियो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पे कै वो संत।

अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किन्हें न पाई अनिक भगत बंधन नित कर है।

अवरु पाव समीत बिसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवथ यो तन संचो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ टावे सो तन हर से वाते पावे जिस सुख को नित बाछे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पजहर की सरनी इनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निदान मैं हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान मन पर बोधो हर कह नाए दै दिस्तावत आ बैठाए ताको बिघन न लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए फल ताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन से पूरन होए आस भगत पाए आत्म पर गास स्थित कर जाए बसे अब नासी कौ नानक का की जम पासी

तनहारै सिमरत सासत बेद बीचारे। हर की भगत करो मन लाए, मन बंचत नानक फल पाए। संगना चालस तेरे तना तू क्या लपटा वह मूर्ख मना। सुत मीत कुटंबर बनता इनते कहो तुम कवन सनाथा। राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार। अस हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी। जिन दिए तिस बूझे न बेगाना नाम विसार नानक पछताना। गुर की मत तू लेह आने भगत बिना बहु डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे। आप जपहो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो। सार पूत सत हर को नाओ सहत सुभाय नानक गुन गाओ। गुन गावत तेरी उतरस मैल बिनस जाए हों मैं बिक पैल। होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल। छाड़ स्यानत सगली मना साध संग पावै सच तना। हर पूंजी संच करो ब्योहार इहा सुख दर गै जयकार। सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाकै मस्तक।

साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो सा सास प्रभु तुम्हें त्यावो

ते होता। जब तारी आपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वरण चिन्ह न जापत, तब हरक सो कहो किसे ब्यापत। जब आपने आप पार ब्रह्म तमो कहा किस होवत। परम आपन खेले आप वर्ती, जानान करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत कहो किसको गनी। जब एक कह हरगम पार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो हो कित ठाए। जब आपे आप अपनी ज्योत तरह, तब कवन डर कवन कत डरे। आपन चरित आप करने हार, नानक ठाकुर अगम पार। अविनाशी सुख अपने आसन, तय जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूरन करता प्रभ सोए, तब जमकी त्रास कहो हो किस होए। जब अवगत गोचर प्रभ एका, तब चित्रगुपत किस पूछत लेखा।

जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तै बिन मैल कहो हो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तै कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तै चल छिद्र लगत कहो कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तै किसे पूख कवन त्रिपतावे। कर्ण करावन करने हार नानक करते का नाहि सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई।

चिंता जय अपने आपा पतियारा तह कौन कथै कौन सुनने हारा बहु बेअंत उचते उच्चा नानका पसको आपे पहुचा जया प्रच्यो पर पंचकार तय गुण मैं किनो विस्तार पाप पुन तय पई कहावत को नरको सुख पंचावत।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोच सोच ना होवई जे सोची लखवार चुपाए चुप ना होवई जे लाए रहा लेवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह सियणपा लख हो हे ता एक ना चले नाल किव सचियारा होई है केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दोख सोख पाईया है एक ना हुक्मी बखसीस एक हुक्मी सदा पवाईया है हुक्मै अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ताहो मैं कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वड्याइयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तनखे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी ना आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए भाखिया पाओ अपार आख है मंग है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावीऐ गुणी निदान गावीऐ सुनिऐ मन रखिऐ पाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस भावा विण भाणे के नाए करी जे ती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतया गुण दे तेहा कोए ना सूझई जे तिस गुण कोए करे सुना है सिद पीर सुरनाथ सुना है धरत धवल आकाश सुना है दीप लो पाताल सुना है पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास सुना है ईसर ब्रह्मा इंद सुना है मुख साला हनुमंद सुना है जुग जुगत तन भेद सुना है सासत सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास सुना है सत संतोख ज्ञान सुना है अठ सठ का इसनान सुना है पढ़ पढ़ पावै मान सुना है लागै सहज ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास
सुना है सारा गुणा की गाह, सुना है सेख पीर पात साह, सुना है अंधे पावे राह, सुना है हाथ होवे असगाह, नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नास, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछै पछुताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन मार्ग थाक न पाए, मन पथ सिंह प्रगट जाए, मन मग न चले पंथ, मन धर्म से तीसन बंद, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन पावह मुख द्वार, मन परवार साधार, मन तारे तारे गुर सिख, मन नानक पावै है ना भिखो, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावै है दरगह मान, पंचै सोहै दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान, जे को कहे करे विचार, करते कहे करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझे होवे सचियार, तवले ऊपर केता पार, धरती होर पर होर तिस ते पार, तले कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया गुड़ी कलाम, ए हो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन राहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गालवाड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फेराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करहे पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख काहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुर माए तिव तिव पाए, जेता कीता तेता नाओ, विण नावे नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हाथ पैर तन देह, पानी धोतै उतर सो खेह, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओह धोए, भरिए मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवह जाहो, तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिलका मान, सुनया मन्या मन की तापाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, वैण गुण कीते भगत ना होए, सो अस्त आथ बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ,
कवन सो वेला वखत कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माह कवन जित हुआ आकार वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वखत न पायो कादिया जे लेखन लेख पुराण थित वार न जोगी जाने रुत माह न कोई जा करता सर ठीकाओ साजे आपे जाने सोई किव करे आखा किव साल आही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जी को आपाओ जाणै अगै गया ना सोहै पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा असलु एक तात लिखा होए ता लिखी है लिखै होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सालाही सालाहे एति सुरत ना पाईया नदियां अतै वाह पवै समुंद ना जानिए समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़े तोल ना होवनी जे तिस मन हुना विसरा है अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करण देन न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जपै क्या मन मंत अंत न जपै कीता आकार अंत न जपै पारावार अंत कारण किते बिल लाहे ताकि अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवै कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए किते मंग है जोध अपार किते अगणत नहीं विचार किते खाप तुट है वेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाहे किते आ दुख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणे होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाने जेतिया मुहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे के ही के जिसनु बख्से सिफत सालाह नानक पात साही पात साहो अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबाण अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आखिया न जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्याण आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तय गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे हे ता आख ना सक है केई के जीवड़ पावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आख है बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दर केहा सो घर केहा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे केते राग परी स्यों कहियन केते गावण हारे गावह तुहनो पौन पाणी बै संतर गावह राजा धर्म दुआरे गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लेख धर्म विचारे गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इंदा सुन बैठे देवत्या दर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीर्थ नाले गावह जोध महाबल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे
सेई तुदनो गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर किते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई। कर कर वेख कीता अपना जिव तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म न करना जाई। सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करा है बिभूत। खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद। आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साद। संजोग विजोग दोए कार चलावह लिखे आवह भाग। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवान। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान। ओह वेखै उन्ना नदर न आवै बहुता एहो विडाण। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एकावार। कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। एक दूजी भौ लख होहे लख होवै लख वीस। लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश। एतराह पत पवड़ियां चढ़िए होए अतीस। सुन गला आकाश की कीता आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देन ना जोर। जोर ना जीवन मरण नह जोर। जोर ना राज माल मन सोर। जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती थिती वार पवन पाणी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान। कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का कहो कर्म। केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश। केते बरमे घाट घड़ी है रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते केते रतन सुमुंद। केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद। केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िए बहुत अनूप। ताकियां गलां कथियां न जाहे जे को कहे पिछे पछुताए। तिथै घड़िए सूरत मात मान बुद्ध तिथै घड़िए सुरां सिद्धां की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे। ना ओहे मरहै ना ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे।
ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਤਟਾਲ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪਾਏ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਿਹ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣ ਸਾਹਿ ਸਹਾਣ ਗਣ ਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤੁਐ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਧਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਤਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸ਼ੇਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋ ਏਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸ਼ੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਮੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਇਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਹੁਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦਇਆਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਵਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬਧੰਦੇ ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਇਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ
अरूप है, अनूप है, अजू है, अपू है, अलेख है, अपेख है, अनाम है, अकाम है, अधे है, अपे है, अजीत है, अपीत है, त्रिमान है, निधान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंद है, अबंध है, निर्भूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नृसीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबा है, अगा है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है, उजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमाने समस्ति निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पहुणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे, प्रपंगी प्रमाथे समस्ति विभूते, कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जुगवेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज रजवेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जुगवेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे, नमो रोग हरता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं विश्वनानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी, अनूपे अरूपे समस्त निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा बिरद करता, अदो उर्द अर्धं अगं ओग हरता, परं परं परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तु पराजी समस्तास्ततामं, तेरा जोर जाचरी शांद, जले हैं थले हैं, अपीत हैं अपे हैं, प्रभु हैं अजू हैं, आदेश हैं अपेश हैं, पूजंग प्रयात छंद, अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ति निधाने, नमस्तवं निरनाथे, नमस्तवं प्रमाथे, नमस्तवं अगंजे, नमस्तवं अपंजे, नमस्तवं अकाले, नमो नमस्तवं अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राजराजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत परीते, नमो रोख रोखे, नमो शोक शोखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतं, नमो सर्वपीतं, नमो सर्वज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्वमंत्रं, नमो सर्वजंत्रं, नमो सर्वदृशं, नमो सर्वकृशं, नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे सुखो कर्मं प्रणासी, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी, चरपट छंद त्वा प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल युगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्म अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं युक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले, रुआल शांत त्वा प्रसाद, आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल, यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रसाल, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख, आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख, देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग, यत्र तत्र दिशा दिशा हुए फैल्यो अनुराग, नाम काम विहीन पेखत ताम हूँ नह जाहे, सर्वमान सर्वत्र मान सदाए।

मृत्यु स्वयं भव गडन पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो भरम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग न रंग जाकै जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उसतत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सरभंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्वलायक सर्वकायक सर्वको प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जानहि जेहि रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कुड सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मधु भार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश निस दिन अनास अजान बाहो ए अजान बाहो शाहान शाहो राजान राज पहनान पहन देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अतदूत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाडे अंडंड बाडे चाचरी छंद त्व प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे कुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वरती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमं न पित्र न कर्मं न काय अजन्मं अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथिशय अधिशय अदृश्य अकृशय भगवती शंतु प्रसाद कथते के अशिज दिशे के अभिज पिसे के अगंज करमे के अपंज परमे के अभिज लोक है के अदित सुख है के अवतूत वर्ण है के विभूत करने के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक वर्ण है के सर्वा आवरण है के जगतं कृति है के शत्रं क्षत्री है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपो अनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बहिने के एक है अधीने के रोजी रजा कह रही मेरे हक है के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अकबुल गुना है के शाहान शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राज करीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैवं प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीमे के परमं फाहिमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमेश सलामे सलीखत मुदामे गनीमल सिकस्त है ग्रीबुल परसत है बिलंदल मकान है जमीनल जमान है तमीजुल तमाम है रजुअल निधान है हरीफल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उवंग आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपोगत स्वरूप है अशिज है अशुत है कि नरकं प्रणाश है पृथ्वीउल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग।

है, अनंग है, अपेक है, अलेख है, अपेक है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अपूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अपगत है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचंत है, सुनंत है, अलेख है, अधिक है, अलेख है, अपेक है, अटा है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है। चरपट शांत प्रसाद सर्वंगहंता सर्वंगंता सर्वंगख्याता सर्वंगज्ञाता सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंगप्राणं सर्वंगप्राणं सर्वंगकर्मं सर्वंगधर्मं सर्वंगज्युक्ता सर्वंगमुक्ता रसावल शांत त्वा प्रसाद। नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न मातय न जातय न पातय नृसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है। भगवती शांत त्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेश उल सलाम है समस्त उल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसन चराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहंद है के राजक रहंद है क्रीमल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमल खिराज है ग्रीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है हिरासुल फिकन है कलंगंग प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है के सरबुल गुवन है हमेशुल उर्वन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईस है समस्तुल अधीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेक है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है क्रीमुल कमाल है के जुर्त जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आतम प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है। मधुभार शंत प्रसाद मुनमन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंजो हर नर प्रपंजो अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनास मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस्विस अपंड जल थल महंत दिस्विस बेअंत अनुपव अनास त्रेत तार तुरास आजान बाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशेज गात आजेज ना बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टट भंडार अन ठट अपार आडीठ कर्म अत टीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत त्वा प्रसाद। करुणालय है अर्कालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंपर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम्ब्र है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परतिपर है करुणा कर है अजपा अजप है अथपाथप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणीकृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नारनायक है खलकायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है पवभंजन है अरे गंजन है रे प्रतापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हर्ताहर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है कुजंग प्रयात शांत। नमो सूरज सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग सांत रूपे नमो परम तत्तंग अततंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे
नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक आश्री शांद अजय अलय अपय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अढ़ा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल नेवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी करिमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियं करियं करिमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदायंग संगे अपंगं विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदायंग संगे अपंगं विभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें त्व प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह से धान के देख फिरे घर जोग जति के सुर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखिए तो प्राण पति के श्री भगवान की पाई कृपा हूं ते एक रति बेन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पाउन के गौन कौ जात निवारे पारी पुजान के भूप पली बेद न्यावत सीस न जात बिचारे एते पय तो कहा पय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिसान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही हराज हजारे भूत पवेख पवान के भूपत कौन गन नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बेन अंत को अंत के तम सुधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेव पुराण जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जात तार सबै सो विचार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन भूपतो एक रति बिन एक न लेखै सो दिसिपा दुरंत दुबाह सो साज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तुर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बेन त्याग जिहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरयार अब चार है सार की तार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सुबात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाट जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक सुअम्बर साज भरेंगे ब्राह्म महेसर बिसन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नार श्री पत के प्रस हैं पाग ते नार फेर ना दे तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो बख ध्यान लगायो नाहत फ्रियो लिए सात समुन्द्रन लोक गायो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सुबैठ कह ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पशाक सी सिनेवायो
को भूतान कौ पूजत है पाश, को मृतान कौ पूजन तायो, कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। को भूतान को पूजत है पाश, को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवें कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम का वह, आप हाथ दय मुहे बचा वह, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करियै, सब बैरन को आज संग्रियै, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारीय है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दाए मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है काहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जशन उपजायो, आद अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिनाप सवारी, सेवकन को सैव गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बाद कियो। घट घट के अंतर के जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए, साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तारत तब दे अपारा, जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभव, आद अनिल अनाद असंभव, ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत भेदा। ताको कर बाहन अनुमानत, महामूड काश भेद ना जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पहव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पायो राव कही पूपा, अंडज जेरज से तज कीने, उत भुज खान बहुर राच दीनी, कहूं फूल राजा वै बैठा, कहूं सिमट पायो संकर इकैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जीते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण खाता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवाए मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरै तात काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताव तनक मुँह हर हो। रिद सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह शुआय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल पास ते ताहे उबारा।
ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੂ ਕਹਾ ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਰਹਾ ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਸ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ ਸਰਬ ਠਾਉਰ ਮੋਹੋ ਸੁਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜੁਗਮਾਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭਰਾਤਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਕਲ ਦੇਖੋ ਹਰਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਇਨ ਕੋਸ਼ਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁ ਜਪ ਹੇ ਦਇਆਲਾ ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ ਮਨ ਬਾਂਸ਼ਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਦੁਖ ਨ ਤਸੈ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ ਅੜਿਲ ਸੁਨੇ ਗੁੰਗ ਜੋ ਜਾਹੇ ਸੁਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ ਸੁਨੇ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੈ ਹੋ ਜੋ ਜਾਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹੈ ਚੌਪਈ ਸੰਬਤ ਸਤਰੈ ਸਹਿ ਸਫਣ ਜੈ ਅਰਧ ਸਹਿ ਸਫੁਨ ਤੀਨ ਕਹੀ ਜੈ ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵੀਵਾਰਾ ਤੀਰਸਤ ਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਸਵਈਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋਉ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਪੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੇਦ ਸਬੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਾਹੇ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਨਿਓ ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ ਦੁਹਰਾ ਸਗਲ

कृपा कर बनवारिया, इस नाउ होर थाउ नाही शब्द लाग सुवारिया, कहे नानक लिवै बा जाहो क्या करे वेचारिया। आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदर हो जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सचै सुवारिया, कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू देह सोई जन पावे, पावे ता सो जन दे जिसनु, होर क्या करे वेचारिया, एक भरम भूले फिरे दह दे सो, एक नाम लाग सुवारिया। गुरप्रसादी मन भया निर्मल, जिना पाणा पावे, कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे। आवहु संत प्यारे हो अकथ की करै कहानी, करहै कहानी अकथ केरी, चित द्वारे पाईऐ तान मान तान सब सौंप गुर कौ, हुक्म मन्नै पाईऐ हुक्म मन्ने हो गुरु केरा, गावहु सची बाणी, कहे नानक सुनहु संत हो कथे हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने, तू सुन मन मेरे आ, ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया का मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया, कुर्बान कीता तिस है विटो, कुर्बान कीता तिस है विटो, जिन मोह मीठा लाया, कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले, साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ, ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंत ना पाया किने तेरा अपना आप तू जानहे, जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाणा, आख है ता वेखा है सब तू है जिन जग तू उपाया, कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय एक वेख परसुण आया, लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया, कहे नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, विखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार, तज कृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वालहो निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादे जिनी आप तजिया हर वासना समाणी, कहे नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली, ज्यो तू चला है तिव चल है स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चला है तिव चल है जिना मार्ग पावहे, कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा दयावहे, जिसनो कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे, कह नानक सच्चे साहिब ज्यो पावे तिवै चलावहे। एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्द सुहावा सदा सोहिला, सतगुरु सुनाया एहो तिनकै मन वसिया, जिन तुरहों लिखिया आया, एक फिरै कनेरे करहै गल्लां गल्ली किने न पाया, कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी तिहाया, पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों, पवित संगत सबाई।

पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारिंग पाणी कह नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी चित जिनका हिर लिया माया बोलन पए रवाणी कह नानक सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी गुर का सबदर तन है हीरे जित जड़ाओ सबदर तन जित मन लागा एहो हुआ समाओ शब्द से ती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सेव सकत आप उपाय कहे करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसे बुझाए तोड़े बंधन होवै मुकत शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एकस स्यों लिवलाए कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तताय सार ना जाने तताय सार ना जाने गुरु बाजो तताय सार ना जाने तिह गुणे संसार ब्रह्म सुता सुत्या रहन विहाणी गुर किरपा ते से जन जागे जिना हर मन वसया बोलै अमृत बाणी कहे नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हर देव लागै जागत रहन विहाणी माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनहो विसारियै मनहो क्यों विसारियै ए वडदाता जे अगन में आहार पहुंचावै उसनो क्यों पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कहे नानक ए वड़दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया माया अगन सब एको जे ही करता है खिल रचाया जात इस भाणा ता जमया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पाओ दूजा लाया कहे नानक गुर प्रसादी जिना लेव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसे विट हो रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुरु जी मिलै तिसनु सिर सौंपिया विचों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पल्लै पाए हर रास मेरी मन बन जारा हर रास मेरी मन बन जारा सतगुरु ते रास जानी हर हर नित जपे हो जियो लाहा खटे हो दिहाड़ी एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पहाणा कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा ए रसना तू आन रस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होरत किता है जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पिए हर रस बहुड़ न तृष्णा लागै आए एहो हर रस करमी पाईऐ सतगुर मिलै जिस आए कहे नानक होर आन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरे आ हर तुम मैं ज्योत रखी ता तू जग मह आया हर ज्योत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया ज्योत राखी ता तू जग मह आया मन चाओ पहया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रहो मंदर बनया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापय गुर चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापय अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भुगो कहे नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जुगो हे शरीरा मेरे आ इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया
के कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कहे नानक एहो शरीर परवान होआ जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जोत तहरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई कहे नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिले देव दृष्ट होई ए सरवण हो मेरे हो सच सुनने नो पठाए सच सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी सच अलख वेडाणी ताकि गात कही ना जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो सच सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर राखो कै वजा पवन वजाया वजाया वजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी इकना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाउ नवने दो तिसदा अंत न जाई पाया कहे नानक हर प्यारा जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया इहो साचा सोहेला साचे कर गावो गावो ता सोहेला कर साचा जिथे सदा सच ते आवहे सचो ते आवे जा तुद पावे गुरमुख जिना बुझावहे एहो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावहे कहे नानक सच सोहेला सच्चे कर गावहे।

0: करना सर्ब रजाए महला दूजा।
1: ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। एक ना हुक्म समाए ले, एक ना हुक्मे करे विनाश।

0: जिन सीखोवे।
1: होच मूर्ख होच सयाना मूर्ख मुक्त की सार न जाना। होच माया होच छाया हो मैं कर कर जन त्यो पाया। हो मैं बुझे तां दर सुझे

0: पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात, पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास, पड़ी है जेती आरजा पड़ी है जेते सास। नानक लिख एक गल होर हो मैं चकना चाक महला पहला।
1: लिख लिख पढ़िया ते

बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो।

0: पहला कुंभे बद्धा जल रह जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बद्धा मन रह गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी
1: पढ़िया हुए गुनहगार।

सब कुनिवे आपको पर कुनिवे न कोए, करता राजू तो लिए निवे सो गौरा होए। अपराधी गुणा निवे जो हंता मिर्गा है, शेष निवाया क्या थी है, जान दे कसु दे जाहे महला पहला।

0: नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सुत कनाहे पौड़ी।
1: सतगुरु वड्डा कर सालाहिया जिस विच वड्डियां वड्याईया सह मेले ता नदरी आईया जात सुपाणा ता मन।

गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बिठायो रहस कियो सुर देव तू ही जस जय जय जंपे असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपे

सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जन को दे आयो हर की वडियाई हो आख ना सका हो मूर्ख मुग्ध

एक निमख जे बिसरै स्वामी जन कोट दिनस लख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सारग महला पंजवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहया देह नाओ बलिहारी रहाओ चह दिस फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरुड़ारी हाथ दे राख्यो कर अपना ज्यों जल कमला अलपारी हो नाही किछ मैं क्या होसा सब तुम ही कल धारी नानक भाग पर्यो हर पाछै राख संत सदका।

देह आधार सर्व कौ ठाकुर, जी प्राण सुख दाते, प्रमतो हार जो परयो, तौ गुर मिल चरण पराते, कहो नानक मैं सर्व सुख पाया, एह सुख बिहानी राते। सारग महला पंजवा, अब मोहे लब दियो है हर टिका, गुर दयाल भय सुखदाई।

बुद्ध विगास विवेका, ज्यों जल तरंग फेन जल हुई है, सेवक ठाकुर भए एका, जहते उठ्यो तह ही आयो, सब ही एक है एका, नानक दृष्ट आयो सबठाई, प्राणपति हर समका सार

दर्शन देख भय मन आनंद, गुर कृपा से छूटा रहा। बिखम थान बहुत बहुत रिया, अनिक राख सुरूटा। बिखम गार कर पहुँचे नाही, संत सानत भय लूटा।

क्या ए भूपत बपुरे कही है, कहो ए किसनो मार है। राख राख राख सुखदाते, सब नानक जग

गोविंद भजन के निर्भय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सारग महला पंजवा मेरे मन मिष्ट लगे प्रभुला गुरबाह पकर प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर ढोला रहा प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रतपालक मोहे कलत्र सहत सब गुला मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं उला जी तख्त बैसल है तौ दास तुम्हारे घास बढ़ाव है केतक बोला जन नानक के प्रभ पुरख बिदाते मेरे ठाकुर अगह

प्रवाह जो सुख सागर में पाया, सारग महल्ला पंजवा। मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा, खुल्यो कर्म भयो परगासा। घट घट हर हर डीठा रहाओ, पार ब्रह्म आजो नी संभो। सर्ब थान घट बीठा भयो प्राप्त अमृत नामा। बल बल प्रभ चरनीठा, सत संगत की रेन मुख लागी। किए सगल तीर्थ मजनीठा, कहो नानक रंग चलूल भए है। हर रंग

कहु नानक मैं अतुल सुख पाया, जन्म मरण पहला थे सारग महला पंजवा। रे मूड़े आन काहे कत जाई, संग मनोहर अमृत है रे, भूल भूल बिख खाई रहाओ। रब सुंदर चतुर अनूप विधाते, तिस स्यों रुच नहीं राई, मोहन स्यों बावर मन मोहयो, झूठ ठगौरी पाई। भयो दयाल कृपाल दुख हरता, संतन स्यों बन आई, सगल निदान करै मह पाए। कहु नानक

तो बचन दियो मेरे सतगुर तौ मैं साज सिगरिया रहा। हम भूले है तुम सदा अभूला, हम पतित तुम पतित उधरिया। हम नीच बिरख तुम मैलागर, लाज संग संग बसरिया।

न्यायी, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसर न कब हो जाई। कहो नानक मिल संत संगत ते, मगन भए लिवलाई।

सुखदाता प्रभ त्याग्य रहाओ। सुख मंगल कल्याण जिस है घर तिस ही सरणी पाइय, तिस है त्याग मानुख जे सेवहो तो लाज लोन हो जाइए। एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मिल मत बुद्ध पाइए। गुण निदान नानक प्रभ मिलया सगल।

डले सहज सहज गुण गायो रहाओ गुरु बचनात कमात कृपा ते बहुर न कतहु तायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वच्छल ग्रह पायो नाद विनोद कूड आनंदा सहजी सहज समायो करना आप करावन आपे

आद मद अंत प्रभ सोई, कहु नानक साच बिचारो, सारग महल्ला पंजवा। बिन प्रभ रहन न जाए करी, सर्व सुख ताहु कै पूरन, जा कै सुख है हरी रहाओ, मंगल रूप प्राण जीवन धन, सिमरत अनद कना, वड समरथ सदा सद संगे, गुण रसना कवन पना। थान पवित्रा मान पवित्रा, पवित्र सुनन कहन हारे, कहो नानक ते भवन पवित्रा, जा मैं संत तुम्हारे। सार

मित्र मंडल एक तू ही, मात गर्भ तुम ही प्रतपालक, मृत मंडल एक तू ही रहाओ। तुम है पिता, तुम ही पुन माता, तुम है मी

मानस काकु बपरो पाई, जाको राखा रामा रहाओ। आप महाजन आपे पंचा, आप सेवक कै काम।

रहाओ। जन्म जन्म के बिखई तुम तारे, सुमत संग तुम्हारे पाई। अनिक जोन भ्रमते प्रभ बिसरत, सास सास हर गाई। जो जो संग मिले साधु कै, ते पतित पुनीता। कहो नानक जाके वड भागा, तिन जन्म।

अहंग बुद्ध बिख त्यागी, दर्श प्यास आस एक कह की, टेक ही है प्रपागी, अचिंत सोए जागन उठ बैसन, अचिंत हस्त बैरागी। कहो नानक जिन जगत ठगाना, सो माया हर जन ठागी। सारग महल्ला पंजवा, अब जन ऊपर को न पुकारे, पुकारन कौ जो उद्यम करता, गुर परमेश्वरता कौ मारे। रहाओ निर्वैर संग वैर रचावै, हर दरगह उहारे। आद जुगाद प्रभ की वडियाई, जन की पैज सुवारे। निर्भउ भय सगल भउ मिटिया, चरण कमल आधारे। गुर कै बचन जप्यो नाओ नानक, प्रगट भयो संसारे। सारग महल्ला पंजवा, हर जन छोटिया सगला आप, ज्यो जानो त्यो रखो गुसाई, पेख जीवा परताप। रहाओ गुरु उपदेश साध की संगत, बिनस्यो सगल संताप। मित्र सतर पेख समत विचारेओ, सगल संभाखण जाप। तपत बुझी शीतल आघाने, सुन अनहद विस्म पर।

पुजारी करते पूजा कोट विसारण वर्ण दूजा कोट मेहमा जाकी निर्मल हंस कोट उसत जाकी करत ब्रह्मंस।

संग मन राची रहाओ, चिंता हमारे भोजन पाओ, चिंता हमारा लिचनाओ। अचिंत हमारे शब्द उदार, चिंत हमारे परे भंडार, चिंत हमारे कार्य पूरे, चिंता अचिंत हमारे

अचिंत हम आको सकल सिद्धांत, अचिंत हमको गुरदीनो मंत, अचिंत हमारे बिन से भैरव, अचिंत हमारे मिटे अंधेर, अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा, अचिंतो ही घट अचिंतो ही प्रभ घट घट डीठा, अचिंत मिट्यो है सगलो परमा, अचिंत वस्यो मन सुख विश्रामा, अचिंत हमारे अनहद वाजे, अचिंत हमारे गोविंद गाजे, अचिंत हमारे मन पतियाना, निश्चल तनी अचिंत पशान, अचिंतो उपजिया अचिंतो उपजो सगल विवेका, अचिंत चरी हाथ हर हर टेका, अचिंत प्रभु तो

नाओ मेरे खेती नाओ मेरे बारी भगत करो जन सरन तुम्हारी नाओ मेरे माया नाओ मेरे पूंजी तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी नाओ मेरे बंद अपना।

पयो दरबंद हाथी लंका गाढ़ सोने का पया मूर्ख रावण क्या ले गया कह कबीर किस गुण विचार चले जुआरी दो हाथ चार।

मैला कौन पावक अरनीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साधक अर्पेख, मैले जोगी जोगी जंग।

बिगड़ो कबीरा राम दुहाई साच भयो अनकत है न जाई रहाओ चंदन कह संग तरवर बिगड़ो सो तरवर चंदन होए निबरियो पारस कह संग तांबा बिगड़ो सो तांबा कंचन होए निबरियो संतन संग कबीरा बिगड़ो सो कबीर रामा होए निबरियो माथे तिलकत माला बाना लोगन राम खिलौना जाना जोहो बौरा तोत राम तोरा लोग मरम कह जाना मोरा रहा तोरो न पाती पूजो न देवा राम भगत बिन्ने फल सेवा सदगुर पूजो सदा सदा मनावो ऐसी सेव दरगह सुख पावो लोग कह कबीर बौराना कबीर का मरम राम पहचाना उल्टी जात कुल दो बिसारी सुन सह सुन सहज में बुनत हमारी हमरा चेहरा रहा न को पंडित मुला छाडे दो रहाओ बुन बुन आप आप पहरावो जन नहीं आप कहा गावो पंडित मुला जो लिख दिया चाड़ चले हम कछु न लिया हृदय खालस निरखले मीरा आप खोज खोज मिले कबीरा निर्धन आदर को न दे लाग जतन कराए ओ चेतना तरे रहाओ जाओ निर्धन सरधन कह जाए आगे बैठा पीठ फिराए जो सरधन निर्धन कह जाए दिया आदर लिया बुलाए निर्धन सर धन दोनों पाई प्रभु की कला न मिटी जाए कहे कबीर निर्धन है सोई जाके हृदय नाम ना हुई गुर सेवा ते भगत कमाए।

भजोग बिंद भूल मत जाहो मानस जन्म काए ही लाहो राव। जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग बिकल पई नहीं बानी भज ले रे मन सारिंग पानी। आप न भजस भजस कब पाई आव अंत न भजया जाई जो किछ करे सोई अबसार फिर पछताओ न पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव तिन्ही पाए निरंजन देव गुरमिलता के खुले कपाट।

निज पद ऊपर लागो ध्यान, राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान रहाव। मूल द्वारे बंदिया बंद, राव ऊपर गहरा ख्या चंद, पच्छम द्वारे सूरज तपै, मेर डंड सिर ऊपर बसै, पश्चिम द्वारे की सलियोड़, तेह

काजी सो झुकाया विचार है काया की अगन ब्रह्म प्रजार है। सुपन बिंद न दे चरना तिस काशी को जरा न मरना सो सुल्तान जुदो सरतान है बाहर जाता पीथर आना है। गगन मंडल में लश्कर करे सो सुल्तान छतर सिर तरै जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उचरे मुसलमान।

ना पाथर बोलाय ना किछ दे फोकट कर्म ने फलाय सेव। जे मृतक को चंदन चिढ़ावै उसे कहो कमन फर पावै, जे मृतक को विष्टा माय रुलाई ता मृतक

ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख भंजे ना रहाओ। जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूल ही नाहे। जब ही सियार सिंह को खाए फूल रही सगली बन राय। जीतो बूढ़े हारो तिरै गुर प्रसादी पार उतरै। दास कबीर कहे समझाए केवल राम रहो ले बुलाए। सत्तर सह सलार है जाके सवा लाख पैका बरता के। सेख जु कहिए कोट अठासी छपन कोट जाके में खेल खासी। मो गरीब की जो को गुजराव मजलस दूर महल को पावै। रहाओ ते तीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिर दीवाना। बाबा आदम को किछ नजर दिखाई उन पी पिस्त कनेरी पाई। दिल खल हल जाके जरद रूबानी। दिल खल हल जाके जरद रूबानी छोड़क सेव करे सैतानी। दुनिया दोस रोस है लोई अपना किया पावे सोई। तुम दाते हम सदा पिखारी देव जवाब होए बजगारी। दास कबीर तेरी पन समाना।

जानो बैकुंठ है कहाँ रहाओ। आप आपका मर्म न जाना बातन ही बैकुंठ बखाना। जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग ना ही चरण निवास। खाई कोट न पर पगारा ना जानो बैकुंठ द्वारा। कह कमीर अब कही है।

कबीर जियो अष्टपदी कर दू जाय ओंकार सतगुर प्रसाद अगाम मंत्रो गाम गाढ़ रचियो बास जामै जोत करे प्रगास बिजली चमकै होए आनंद जय पौड़ै प्रभाल गोविंद ए जियो राम नाम रिव लागै जरा मरण छूटै परम भागै रहाउ अबर्ण बर्ण स्यो मन ही प्रीत हो मैं गावन गावै गीत अनहद शब्द होत चुनकार जेह पौड़ै प्रभ श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रय स्थान तीन त्रय खंडा अगम गोचर अभ्यंत पार न पावै को तरनी तरमंत कदली पोहप धूप प्रगास राज पंकज मैलियो निवास द्वादश दाल्यांतर मंत जेह पौड़ै श्री कमलाकंत अर्ध उर्द मुख लागो कास सुन मंडल में कर प्रगास।

मन मदा जाना जे कोए जो बोले सो आप होए जोत मंत्र मन आसर करै कह कबीर सो प्राणी तरै कोट सूर जाके प्रगास कोट महादेव अर कबिलास दुर्गा कोट।

चंद्रमय करह चिराक सुसुर तेती सौ जेव पाक नवग्रह कोठा डे दरबार धर्म कोट जाके प्रतहार पवन कोट चौ बारे फिर बस कोट सेज बिस्तर समुद कोट जाके पानी हार रोमावल कोट अठारह पार कोट कमेर पर है भंडार कोटक लक्ष्मी करै सिगार कोटक पाप पुन बहिर कोट इंद्र कोट जाके सेवा कर है छपन कोट जाके प्रतहार नगरी नगरी खेत अपार लट छूटी वरसै बिकराल कोट कला खेलै गोपाल कोट जग जाके दरबार गंधर्व कोट करै जयकार विद्या कोट सब गुण कहै तौ पार ब्रह्म का अंत न लहै बावन कोट जाके रोमावली रावण सेना जैते चली सहस कोट बोकैत पुराण दुर्योधन का मथ्यामान कंदर्प कोट जाके लवै न तरै अंतर अंतर मनसा हरै कह कबीर सुन सारिंग पान देह वै पद मंगोदान भैरव बाणी नाम देव जियो की घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद रे जेहबा करो सत खंड जामना उचर श्री गोविंद रंगीले जे बार कहनाए सुरंग रंगीले हर हर ध्याए राव मिथ्या जेहबा अमरे काम निर्वाण पद हर को नाम संख कोट अन पूजा करी

तिनका मैं ना करौ दर्शना रहा। जिनका पीतर है अंतरा जैसे पशु तैसे ओ नरा, प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सोह बत्तीस लखना। दूध कटोर है गडवा पानी, कपल गाय ना मैं दोहयानी। दूध पियो गोविंद राय, दूध पियो मेरो मन पतियाय। ना ही ता घर को बाप रिसाए, सोयन कटोरी अमृत भरी। लय ना मैं हरिया गय तरी, एक भगत मेरे हृदय वसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत कर गया। नामे हर का दर्शन पया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रचता को करो।

कांड कियो ना पावै, कबहु कर कर टूक मंगावै, कबहु कूर्ण चने बिनावै, जो राम राखै त्यो रियरे पाई, हर की महिमा किछ कथन न जाई रहाओ। कबहु तुरे तुरंग न चावै, कबहु पाए पन हियो ना पावै, कबहु काट सुपेदी सुबावै, कबहु ब्राह्मण

हस्त खेलत तेरे देहुरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। हीनड़ी जात मेरी जात मराया, छिपे के जन्म काहे को आया। लय कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछे बैठा जाए। ज्यो ज्यो नामा हर गुण उचरे, भगत जना को देहुरा फिरे। भैरव नाम देव जियो घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखावंत जल से ती काज। जैसी मूड़ कुटुंब परायण, ऐसी नामे प्रीत नारायण।

गयंदा पारनारी से कालय तंदा जैसे सिंबर देख सुआ बिकसाना अंत की बार मुआ लपटाना पापी का कार्य अग्नि माहे जलत रहे मिटवे कब नाहे रहा हार की पग

जो बेसवा के पराय खारा कापर पहर करे सिंगारा पूरे ताल निहाले सास वाके गले जमका है पास जाके मस्तक लिखियो कर्मा सो पज पर है गुर की सरना।

हर जी को सिमरन धरा रहा बस जा बस की नी सब राजे बिनती करे पटरानी पुत प्रहलाद कया नहीं माने चिंतो और ऐठानी दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सौद कनेरी गिर तल जल ज्वाला भय राख्यो राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल भय को प्यो मुहे बताओ जो तुह राख है पीत पिताम्बर श्री भवन धनी थंब माहे हर पाख है हर नाकस जन नख बिदार्यो सुर नर किए सनाथा कहे नाम देव हम नर हर ध्यावै राम अभय पद दाता सुल्तान पूछे सुन बे नामा देखो राम तुम्हारे कामा नामा सुल्ताने बदला देखो तेरा हर बिठला बिस्मिल गऊ देव जीवाए नातर गर्दन मारो ठाए बादशाह ऐसी क्यों होए बिस्मिल किया न जीवाए कोए मेरा किया कछु न होए कर है राम होए है सोए बाद साह चढ़ियो अहंकार गज हस्ती दिन

सात घड़ी जब बीती सुनी अजो ना आयो त्रिभुवन धनी पाखन तनबाज बजायला गरुड़ चढ़े गोविंद आएला अपने भगत पर की प्रतपाल गरुड़ चढ़े आए गोपाल कहता धरन इकोडी कराओ कहता लेकर ऊपर धराओ कहता मुई गौ देओ जियाए सब कोई देखे पतियाए नामा प्रणवाए सेल मसेल गौ दुहाई बछरा मेल दुदाए दोहे जब दुदाए दोहे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे धरी बादशाह महल में जाए औ घट की घट लागी आए काजी मुल्ला बिनती फुरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय नामा कह सुनो बादशाह ए किच पतिया मुझे दिखाए इस पतिया का यह परवान सासील चालो सुल्तान नाम देव सब रह समाए मिल हिंदू सब नामे पह जाए जो अब की बार न जीवे गाए ता नाम देव का पतिया जाए नामे की कीर्त रही संसार भगत जना ले उदरिया पार सगल कलेश निंदक।

जो गुरुदे गुरुदेव सा मिले मिलाय मुरार जो गुरुदेव सा उतरे पार जो गुरुदेव सा बैकुंठ सराय जो गुरुदेव सा जीव स्मराय सत सत सत सत सत गुरुदेव झूठ झूठ झूठ झूठ आन सब सेव रहाव जो गुरुदेव ता नाम दृढ़ावै जो गुरुदेव नंद दिसावै जो गुरुदेव पंच ते दूर जो गुरुदेव नमर बोचूर जो गुरुदेव ता अमृत बानी जो गुरुदेव ता अकथ कहानी जो गुरुदेव ता अमृत दे जो गुरुदेव नाम जप ले जो गुरुदेव भवन त्रै सूजै जो गुरुदेव ऊच पद भूजै जो

जो गुरुदेव लीला टहे लेख। जो गुरुदेव कंध नहीं रहे, जो गुरुदेव देह राख रहे, जो गुरुदेव सा छापर जाय छापर छाई, जो गुरुदेव सह सहज निकसाई, जो गुरुदेव ना अठ सठ नाया, जो गुरुदेव तन चक्र लगाया, जो गुरुदेव तन द्वादश सेवा, जो गुरुदेव सबै बिखमेवा, जो गुरुदेव ता संसार टूटे, जो गुरुदेव ता जमते छूटे, जो गुरुदेव ता पौ जल तरह, जो गुरुदेव ता जन्म न मरे, जो गुरुदेव अठ दस व्यवहार, जो गुरुदेव अठारह पार, जो जी बिन गुरुदेव अवर नहीं जाई, नाम देव गुर की शरणाई। पैरो बाणी रविदास जियो की कर दू जाय ओंकार सतगुर प्रसाद, बिन देखे उप

सो मन मन की दुविधा खाए, बिन द्वारे त्रै लोक समाए। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता हुए न अन पै रहे। फल कारण फूली बनराए, फल लागा तब फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान पया तह कर्म नाश। कृत कारण दद मथ सयान।

धर्म फुल फल ज्ञान पत प्राप्त छाव घणी चूका मन बिमान अखी कुदरत कन्नी बाणी मुख आखण सच नाओ पत का धन पूरा हुआ लागा सहज ध्यान अखी कुदरत कन्नी बाणी मुख आखण सच नाम पत का धन पूरा हुआ लागा सहज ध्यान महारुति आमना वेखो कर्म कमाए नान करे न सुकई जे गुरमुख रह समाए महला पहला बसंत रोत आईले सरस बसंत माहे रंग राते रवै से तेरे चाय किस पूछड़ा बोला गोपाय तेरा दासन दासा करो राय जग जीवन जुगत ना मिलै काय रहा तेरी मूर्ति का बहुत रूप किस पूछड़ा वो दे तू।

तेरा सच नाम परमेसरा, तेरी गत अभिगत नहीं जानिया, अण जानत नाम बखाणिया। नानक बेचारा क्या कहा है, सब लोग सलाह है एक सह सिर नानक, लोका पाव है बलिहारी जाओ जेते तेरे नाव है। बसंत महला पहला, सोने का चौका कंचन कुवार, रूपे की आकारा बहुत विसार, गंगा का

पसंद बिन पूजे सब खड़ी संबंध जेते जी लिखी सरकार करनी ऊपर हो सार हुक्म करे मूर्ख गावार नानक साचे के सिफत भंडार बसंत महला तीजा वस्त्र उतार दिगंबर होग जटा तार क्या कमावे जोग मन निर्मल नहीं दसवै द्वार परम प्रमावै मूड़ा वारो वार एक त्याव मूड़ मना पार उतर जाए एक किनार सिमरत सासर करै वख्यान नादी बेदी पढ़े पुराण पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे तिन कर मैया नेड़ नाहे

मत बिसरस रे मन राम बोल अपरंपर गमय गोचर गुरमुख हरे आप तो लाए अतुल सोल रहाव गुर चरण सरे वै गुर सिख तोर गुर सेव तरे तज मेर तोर नर निंदक लोभी मन कठोर गुर सेव ना पाई

बसंत महला तीजा एक तुका साहिब भावै सेवक सेवा करै जीवित मरै सब कुल उदरै तेरी भगतना छोड़ो क्या को हसै साच नाम मेरा हृदय वसै रहाव जैसे माया मोह प्राणी गलत रहै तैसे संत जन राम नाम रवत रहै मैं मूर्ख मुगद ऊपर करो दया तो शरणागत रहो पया कहत नानक संसार के नेह पलकामा गुर प्रसाद को पावे अमृत नामा महला पहला बसंत हिंडोल घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद साल ग्राम विच बेप पूज मनावो सुकृ तुलसी माला राम नाम जा पेड़ा बांधो दह दया करो दयाला काहे कलरा सिंचो जन्म गुवावो काची टहक दिवाल काहे गच लावो रहाव कर हर हट मार टिंड परोवो तिस भीतर मन जोवो अमृत सिंचो परो क्यारे तो माली के होवो काम क्रोध दोय करहो बसोले गोडो धरती भाई जो गोडो त्यो तुमरा त्यो तुम सुख पावो कीर्तन मेटिया जाई बगल ते पुन हंसला हो वै जे तू करै दयाला प्रणत नानक दासन दासा दया करो दयाला बिसंत महला पहला हिंडोर साहुरड़ी वथ साब के छिप सांझी पेवकड़ा धन वखे आप कुछ अजी दोस न दे जाना नाही रखे मेरे साहिबा हो आपे परम भुलाणी अखर लिखे सही गावा और न जाना बाणी राव कड कसीदा पहरै चोली ता तुम जानो नारी जेकर राखै बुरा न चाखै हो वै कंत प्यारी जे तू पढ़िया पंडित बिना दोए अखर दोए नावा प्रणवत नानक एक लंघाए जेकर सच समावा बसंत हिंडोल महला पहला राजा बालक नगरी काची दुष्टा नाल प्यारो दोए माई दोए बापा पढ़िए पंडित करो बिचारो स्वामी पंडता तुम देहो मती किन मिद बाप पावो प्राण पति रहाओ पीतर अगन बनास पतमौली सागर पंडाए पाया चंद सूरज दोए घर ही पीतर ऐसा ज्ञान न पाया राम रवंता जानिए कमाई भोग करे ताके लखन जानिए खिमा धन संग्रहे कहया सुना न खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणत नानक दासन दासा खिन थोला खिन मासा बसंत हिंडोल महला पहला साचा साहो गुरु सुखदाता हर मेले भुख गवाए कर कृपा हर भगत दड़ाए आंदन हर गुण गाए मत भूलै रे मन चेत हरी पाइए चेत हरी बिन गुरमुखना बिन गुरमुक्त नाही त्रैलोई गुरमुख पाइय नाम हरी रहाओ बिन भक्ति नहीं सतगुर पाइय बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सत्संग न पाइय करम मिलै हर नाम हरी घट घट गुप्त उपाय वेखै प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करै सुहार रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिन को तख्त मिलै वड्याई गुरमुख से प्रधान किए पारस पेट भये से पारस नानक हर गुर संग थिए जिन को तख्त मिलै वड्याई गुरमुख से प्रधान किए पारस पेट भये से पारस नानक हर गुर संग थिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

वसे मन आए सदा शांत सुख सहज समाए साच रहते तिन साध बसंत मन तन हरिया रब गुण गोविंद बिन नामे सुखा संसार अगन तृष्णा जले वारो वार सोई करे जे हर जियो भावे सदा सुख शरीर भाणे चित लावे अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए नानक नाम बसै मन आए बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाए मन तन हरिया सतगुर पाए सफल्यो बिरक हर के द्वार साची बाणी नाम प्यार हे मन हरिया सहज सुभाए सच पल लागे।

गुरमुख बिकसै सहज सुभाए। आन दिन कीर्तन करे दिन रात, सतगुर गवाई बिचो झूठ भ्रांत। पार पंच वे करिया विस्वाद, गुरमुख पाइये नाम प्रसाद। आपे करता सब रस भोग, जो किछ करे सोई परोग। बड़ा दाता तिल नत माए, नानक मिलिए शब्द कमाए। बसंत महला तीजा, पूरे भाग सच कार कुमावे। एको चेते फिर जो न आवे, सफल जन्म इस युग में आया। साच नाम सहज समाया, गुरमुख कार करो शब्द जग माहे। समाणी चौ युग पसरी साची होए, से जन साचे साचे भाए। साच ध्यान देख जूर, संत जना की पग पंकज धूर। इको करता अवर न कोय, गुर शब्दी मेलावा होए। जिन सच सेव्या देख बुझाए, जिन सच सेव्या देख जूर। संत जना की पग पंकज धूर, हर सेती सद रहे लिवलाए। पूरे सतगुर दिया बुझाए,

सोए, आप भुल सच्चा सच सोए, होर सब भुले दूजे पत गोए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साज समाणी, बसंत महला तीजा। बिन करमा सब भरम पुलाई, माया मोहे बहुत दुख पाई, मन मुख अंधे ठौर न पाई, बिष्टा का कीड़ा बिस्ता माहे समाई।

लाए आपे आप वसे मन आए नहचल मत सदा मन धीर हर गुण गावे गुणी गहीर नामो भूले मरे बिख खाए मृता जन्म फिर आवे जाए रहो बहु भेह करे मन शांत न होए बहु अभिमान अपनी पत गोए सेवड़ भागी जिन शब्द पछाणिया बाहर जादा घर मह आणिया घर मह वस्त अगम अपारा गुरमत खोजै शब्द बीचारा नाम नाव निद पाई घर ही माहे सदा रंग राते साच समाहे आप करे किच करन न जाए आपे भावे लय।

राम नाम रस रहे अगाए, कोट कुटंतर के पाप जल जाहे, जीवत मरे हर नाम समाए, हर की दात।

ब्रह्म मुक्त न होए, भव संजम शांत न पावे कोए। गुरमत नाम प्राप्त होए, बड़ भागी हर पावे सोए। कल मह राम नाम वड्याई, गुर पूरे ते पाया जाई। नाम रते सदा सुख पाई, बिन नामे होमे जल जाई। बड़ भागी हर नाम बिचारा, छूटे राम नाम दुख सारा। हृदय वस्या सो बार

सदगुर भेटे जमकाल की पर आवे ना पेटे। यो मन छूटा गुर लिया चढ़ाए नानक माया मोह शब्द जलाए। बसंत महला तीजा बसंत चढ़या फूली बन राए। हे जी जंत फूले हर चित लाए।

चर नाम बनसे गोविंद जियो सतसंगत मेल कर कृप से जन्म जन्म के किल विख मल भरिया मिल सागत कर प्रभ हंसे राव तुमरा जन जात अभिजाता हर जप्यो पत तप विछे हर कियो सगल भवन ते ऊपर हर शोभा हर प्रभ दिन से।

हर जन, जिन हर धार्यो हर उर्से, हम ढींडे ढीम बहुत अत पारी, हर धार कृपा प्रभ मिलसे। जन नानक गुर पाया, हर त्रुटे हम किए पतत पविचे, बसंत हंडोल महला।

ध्यान इसके गत में त कही न जाए नानक जान हर हर त्याए बसंत माला पंजमा।

त्यागे चरण कमल पागे तिम मुंबलो प्रभ सुभागे अचेत मन मेरे रहो सगन वासुकूले एक रहे सुख कटूले बसंत रुत आई प्रफुल्लता रहे अब कलु आयो रे एक नाम बोबो बोबो आन रूत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो गुर मिले हर पाए जिस मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे बसंत महला।

तुझ ते होवे और ना दूजा करता भगत तेरा सोई तुद पावे जिसनो तू रंग धरता तू वरदाता तू वरदाना और नहीं को

पूर्ण एक पुरख भगवानो सांप संत महला नौवा पापी ये मैं काम बसाए मान चंचल जाते गेहो न जाए रहो जोगी जंगम और सन्यासी सबे पर डारी पास।

0: ले बिरता कहो माए अवगुण छोडो गुण होमे काटे धोए सदा मुक्त बंध ना सके कोए
1: सदा नाम वखाणे और न कोए मन हरते ताणे आवे।

सब तिसर जाए। तू अपलना पुल्लो कदे नाहे, गुर शब्द सुनाए मत अगाहे। तू मोटो ठाकर शब्द माहे, मन नानक मान्या सच सलाहे। बसंत महला पहला, दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह चै पर हर दोए। दूर दर्द मत अमृत खाए, गुरमुख बूझे एक समाए। तेरे दर्शन को के ती दिल लाए, विरला को चीनस गुर शब्द मिलाए। रहाओ वेद बखान कहिया इक कहिया, ओहो बेअंत अत किन लहिया। एको करता जिन जग किया, बाज तला हर गगन तरिया। एको ज्ञान ध्यान तन बाणी, एक निरालम कथ कहानी। एको शब्द सच्चा निशान, पूरे गुरते जाने जान। एको धर्म दृढ़ सच कोई, गुरमत पूरा जुग जुग सोई। अनहद राता एक लिवतार, ओहो गुरमुख पावै अलख अपार। एको तख्त एको पात साहो, सरबी थाई बेपरवाहो। तिसका किया तर पवन सार, ओहो अगम अगोचर एकंकार। एका मूरत साचा नाओ, तिथै निबड़ै साच न्याओ। साची करनी पत परवान, साची दरगह पावे मान। एका भगत एको है पाओ, बिन पै भगती आवो जाओ। गुरते समझ रहे निर्वाण, हर रस राता जन परवान। इत उत देखो सहजे राहो, तुझ बिन ठाकर किसे आहो। नानक हमने शब्द जलाया, सतगुर साचा दर्श दिखाया। बसंत महला पहला, चंचल चीत न पावे पारा। आवत जात न लागे बारा, दुख तनो मरिए करतारा। बिन प्रीतम को करे ना सारा, सब उत्तम किस आखो हीना। हर पल की सच नाम पतीना, रहाओ औखद कर बाकी भतेरे। क्यों दुख चुका है बिन गुर मेरे, बिन हर पंक्ति दुख कनेरे। दुख सुख दाते ठाकुर मेरे, रोग बढ़ो क्यों बांधो तीरा। रोग बुझै सो काटे पीरा, मैं अवगण मैं नमाहे शरीरा। टूडत खोजत गुर मेले बीरा, गुर का शब्द दारू हर नाओ। जो तू राखे तिवे रहाओ, जग रोगी कह देख दिखाओ। हर निर्मायल निर्मल नाओ, कर्म है कर जो देख दिखावे। गुर महली सो महल बुलावे, मन है मनुआ चित में चीता। ऐसे हर के लोग अतीता, हरख सोगते रह निरासा। अमृत चाख हर नाम निवासा, आप पछाण रह लिव लागा। जन्म जीत गुरमत दुख लागा, गुर दिया सच अमृत पीवो। सहज मरो जीवत ही जीवो, अपनो कर राखो गुर पावे। तुमरो होए सो तुझे समावे, भोगी को दुख रोग व्यापे। कट कट रब रिहास प्रभ जापे, सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता। नानक राम रवै है तचीता। बसंत महला पहला, एक तुकिया मत पसम अंदले गर्भ जाहे। इन बिद नागे जोग नाहे, मुड़े काहे बिसार्यो ते राम नाम। अंत काल ते रह आवे काम, रहाओ गुर पुछ तुम करो विचार। जह देखो तह सारग पान, क्या हो आखा जात चुनाहे। जात पात सब तेरे नाए,
काहे माल दरब देख गर्भ जाहे चलती बार तेरो कछु नाहे पंच मार चत रखो थाए जुग जुगत की है पाए हमे देखड़ो ते मने माहे हर न चेत है मूड़े मुक्त जाहे मत हर विसरे जम बस पाहे अंतर।

ज्योत जी असंख दे आधार, तू सर सागर गुण गहीरा, तू अकल निरंजन परम हीरा, तू आपे करता करण जोग, नह केवल राजन सुखी लोग। नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद। बसंत हिंडोल महला पहला, घर दूजा एक ओ अंकार, सत गुर प्रसाद। नौ सत चौदह तीन चार, कर महलत चार बहाली, चारे दीवे चौ हाथ दिए एका एका वारी। मेहरवान मधुसूदन मातो, ऐसी सकत तुम्हारी, रहाओ कर कर लसकर पावक तेरा, धर्म करे सिकदारी। धरती देग मिले इक वेरा, भाग तेरा भंडारी, ना साबुर होवे फिर मंगे नारद करे खुआरी। लब अंधेरा बंदी खाना, औगण पैर लुहारी, जी मार पवे नित मुदगर, पाप करे कोटवारी। पावे चंगा पावे मंदा, जैसी नदर तुम्हारी, आद पुरख को अल्हो कहिया, सेखा आई वारी। देवल देवत्या कर लागा, ऐसी कीरत चाली, पूजा बांग निवाज मुसला, नील रूप बनवारी। कर कर मिया सबना जिया, बोली अवर तुम्हारी। जे तू मीर मही पत साहेब, कुदरत कौन हमारी। चारे कुंट सलाम करेगे, कर कर सिफत तुम्हारी। तीरथ सिमरत पुन दान, किछलाहा मिले दिखाड़ी। नानक नाम मिले वडियाई, मीका कड़ी समाली। बसंत हंडोल कर दूजा महला चौथा, एक ओ अंकार सत गुर प्रसाद। काया नगर इक बालक बसया, किन पल थिर न रहाई, अनेक अपाव जतन कर थाके, बारंबार परमाई। मेरे ठाकुर बालक इकत कर राण, सतगुर मिलैता पूरा पाया, पाज राम नाम निशान रहाओ। एहो मृतक मड़ा शरीर है, सब जग जत राम नाम नहीं बसया। राम नाम गुर उदत चुराया, फिर हरिया हुआ रसिया। मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजा, एक गुरमुख चलत दिखाया। बाहर खोज मुए सब साकत, हर गुरमति कर पाया। दीना दीन दयाल पै है, जो कृष्ण बिदर कर आया। मिलियो सदामा पावनी तार, सब किछ आ गए दाल पंज समाया। राम नाम की पैज वडेरी, मेरे ठाकुर आप रखारी। जे सब साकत करे बखीली, एक रदी तिल ना कटाई। जन की उस्तत है राम नामा, दै दिस सोबा पाई। निंदक साकत खब न सके, तिल अपने कर लुकी लुक लाई। जन को जन मिल सोबा पावे, गुण में गुण पर गासा। मेरे ठाकुर के जन प्रीतम प्यार, जो हो है दासन दासा। आपे जल अपरंपर करता, आपे मेल मिलावे। नानक गुरमुख सहज मिलाए, जो जल

कर्ता तू करणहार, तू ऊंचा तू बहु अपार, कर कृपा लड़ले हो लाए, नानक दास प्रभु की शरणाए। बसंत की वार महला पांचवा। एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, हर का नाम तिहाए कै, हो हरिया पाई कर्म लखन तै पाई है, ए रुत सुहाई वन तृण त्रिपवन मौलिया, अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजै, लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुड़ न ताई पंजे बदे महाबली, कर सच्चा टोआ अपने चरण जपायन, बिच दूखड़ोआ रोग सोग सब मिट गए, नित नवा नरोआ बिन रहन नाम त्याए ता, फिर पाए नमुआ जिसते उपजिया नानका, सोई फिर हुआ तिथो उपजय कह रह, कह महे समावे जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावे, कहन ध्यान सुनन नत से भगत सुहावे, अगम अगोचर साहिबो दूसर लवे न लावे, सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे। बसंत बाणी भगतां की कबीर जी कर पहला, एक ओ अंकार सत गुर प्रसाद, मौली धरती मौलिया आकाश, कट कट मौलिया आत्म प्रगास, राजा राम म्योलिया अनंत पाए, जय देखो तैरहा समाए रहाओ, द्वितीया मौले चार वेद सिमरत।

जागे जागे सुखदेव अरपूर। हणवंत जागे तार लंकूर, शंकर जागे चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमत जागे सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर पज राम नाम। जुए खसम है जाया, पूत बाप खैलाया, बिन श्रवणा खीर पिलाया। देखो लोगा काल कै पाओ, सुत मकलाई अपनी माओर हाओ। पगा बिन हुरिया माता, बदने बिन खर खर हास्ता। निंद्रा बिन नर पैसो वै, बिन बासन खीर बिलो वै। बिन अस्थन गौ गौ लवेरी, तैडे बिन बाट कनेरी। बिन सतगुर बाट न पाई, कह कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पढ़न साल, संग सखा बहलिए बाल। मोको कहा पढ़वाए सुर आल जाल। मेरी पटिया लिख देहु श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न स्यो नहीं काम। रहाओ संडे मर के कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छड़ाओ मेरो कहिए। मेरो कहिए मान, मुको कहा सतावो बार बार। प्रभ जल थल गिर पिए पहार, एक राम न छोड़ो गुहेगार। मोको काल जार पावे मार डार। काड खड़ग को प्योर साए, तुझ राखन हार मुहे बताए। प्रभ थाम ते निकसे कै विस्थार, हर नाकस छेद्यो नख विदार। उए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसंग देव। कह कबीर को लख न पार, प्रहलाद उदारे अनेक वार। इस तन मन मदे मदन चोर, जिन ज्ञान रतन हर लीन मोर। मैं अनाथ प्रभ कहो काहे,

सहाब साई रहाउ सनक सनंदन शिव सुपाद नाभ कमल जाने ब्रह्माद सब जन जोगी जटा जटा तार सब आपन ओ

जन्म मरण दुख आख तीर, सुख सागर गुन रो कबीर। नायक एक बंजारे पाच, बर्द पसीचक संग काच। नौ बहिया दस गुण आहे, कसन भतर लागी ताहे। मुहे ऐसे बंज स्यो नहीं काज, जह कटे मूल नित बड़े प्याज। रहाओ सात सूत मिल बनज तीन, कर्म पावनी सांगलीन। तीन जगाती करते रार, चलो बंजारा हाथ चार। पूंजी हरानी बंज टूट, दह दिस टांडो गयो फूट। कह कबीर मंच सरती काज, सहज समानोता परम पाज। बसंत हिंडोल कर दूजा, एक ओ अंकार सत गुर प्रसाद। माता जूठी पिता जूठा, जूठे ही फल लागे। आवे जूठे जाए पिछू जूठे, जूठे मरे अपागे। कहो पंडित सुच्चा कवन ठाओ, जहां बैस हो भोजन खाओ। रहाओ जेबा जूठी बोलत जूठ।

रामानंद जी घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसार। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चतन चल मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पही उमंग।

जाइए तह जल पखान। तू पूर रहो है सब समान, वेद पुराण सब देखे जोए। इहां तो जाइए जो इहां न होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सकल बिकल प्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कूट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की, एक को अंकार सतगुर प्रसाद। साहिब संकटवे सेवक पजे, चिरंकाल न जीवे दो कल लजे। तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे, चरण कमल मेरे हीरे बसे। रहाओ जैसे

आ गया गोदावरी। संसार के कामा नारायण सो प्रसन्न हुए ता सेवक नामा। लोभ लहर अत नीचर बाजे काया डूबे केसवा। संसार समुंदे तार गोविंदे तार लै बाप बीठला रहाओ।

केशवा नामा कहे हो तार पी ना जाओ मुँह को बाह देहे बिठिला। सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लेकर हाँकती। जैसे पनकत थ्रुटिट राता पणत नाम दे उरम रहया अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुझे।

तन सुगंध ढूंढे परदेस, आप तन का जो करे विचार तिस नहीं जम कंकर करे खुआर, उतर कलतर का करे हंकार ठाकुर लेखा मगन हार, फेड़े का दुख सह

राति राम जपत मन तीरे हमें छोड़ तई बैरागन तब साची सुरत समानी अकल निरंजन स्यो मन मानिया बिसरी लाज लुकानी पूर पवेख नाही तुम जैसे मेरे प्रीतम प्राण अदारा हर कै नाम रति सुहागन नानक राम पतारा सारग महला पहला हर बिन कियो रही है दुख ब्यापे जेवा साधन फिकी रस बिन बिन प्रभ काल संताप रहाओ जब लग दर्शन परसै प्रीतम तब लग

जय बरसै कोकल मोर बैरागै तरबर बिरख बिहंग पियंतम कर पर तन सुहागै कुचल करूप कनार कुलखनी फिरका सहज न जानिया हर रस रंग रसन ही तृप्ति जन्मत दुख समानिया आए न जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे नानक प्रगते।

मेरो मन मान्या हर पाए प्राण अधारा रहाओ इन बिद हर मिलिए वर कामन तन सुहाग प्यारी जात वरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द विच

पाल तय तब पाया हर चरणी चतलाए मत प्रकाश पई हर त्याया ज्ञान तत्लव लाए अंतर ज्योत प्रगटी मन मान्या हर सहज समाद लगाए हृदय कपट नत कपट कमाव है मुखो।

नानक नाम र निरंजन पाया, नाम जपत सुख पाए। सार्ग महल्ला चौथा, मेरा मन राम नाम मन मानी। मेरा हीरा सतगुर प्रीत लगाई, मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो जन ऊपर, जन देवो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया, हर मन

पंच जना गुर वस्कत आने तो उन मन नाम लगानी जन नानक हर कृपा तारी हर राम में नाम समानी सारग महला चौथा जप मन राम नाम पड़ सार राम नाम बिन थर

जिस भिख्या को तुम अपनी कर जानो सा छाड़ जाहो सिर पार। तिल तिल पल पल औद सुन काटे बूझ न सके गवार। सो किछ करे जे साथ न चाले इहो साकत का आचार। संत जना के संग मिल बोरे तो पावे मुख द्वार। दिन सत संग सुख किने न पाया जाए पुछो बेद विचार। राणा राव सबे को चाले झूठ छोड़ जाए पासार। नानक

दुख जगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यो जगरत पाप रहाओ। जिस तन का तुम गर्भ करत हो,

जाप उपदेश करत नानक जन तुमको जो सुनो तो जाए संताप। सारग महला चौथा कार पंचमा दो पते पड़ताल एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद जप मन जगन नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन सियो प्रीत लागी मैं हर हर हर टेक सब दिनस सब रात रहाओ हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण गावत सूक नारद ब्रह्मा दिक तव तव गुण स्वामी गणन न जात तू हर ब्यंत तू हर स्वामी तू आपे ही जान है आपनी पांत हर कै निकट निकट हर निकट ही बसते ते हर के जन साधु हर भगात ते हर के जन हर स्यो रल मिले जैसे जन नानक सल लैस लल मिलात। सारंग महला चौथा जप मन नर हरे।

जित ग्रह गुन गावते हर के गुन गावते राम गुन गावते तित ग्रह वाजे पंच शब्द बड़ पाग मथुरा तिन जन के सब पाप गए सब दुख गए सब रोग गए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए तिन जन के हर मार कडे पंच चोरा हर राम बोलो हर साधु हर के जन साधु जगदीश जपो मन बचन कर्म हर हर आराधु हर के जन साधु हर राम बोल हर राम बोल सब पाप गवादु नित नित जागरण करो सदा सदा आनंद जप जगदीश सरो मन इच्छे फल पावो सबे फल पावो धर्म अर्थ काम मोख जन नानक हर सियो मिले हर भगत तोरा सारग महला चौथा जप मन मादो मधुसूदनो हर श्री रंगो परमेश्वरो सत परमेश्वरो प्रभ अंतर जामी सब दुख सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता हर प्रीतम गुन गाओ रहाओ हर कट कटे कट बस्ता हर जल थले हर बस्ता हर थान थनंतर बस्ता मैं हर देखन को चाओ कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे तिस जन के हो मल मल तुवा पाओ हर जन को हर मिलिया हर सरदा ते मिलिया गुरमुख हर मिलिया मेरा मन तन आनंद पै मैं देखा हर राओ जन नानक को कृपा पई हर की कृपा पई जगदीशर कृपा पई मैं अंधनो सद सद सदा हर जपिया हर नाओ सारग महला चौथा जप

रहाओ। हर दर्शन को हर दर्शन को कोट कोट ते तिस सद जति जोगी। सत तीरथ पर पवन करत रहत नराहारी। तन जन की सेवा थाए पई जन को कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले जो पावत हर राम।

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टि का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रहाओ हर का नाम अमृत हर हर, हरे सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले जिस सतगुर सो जन, हर हर अमृत नाम चखासी, जो जन सेव है सद सदा मेरा हर, हरे तिनका सब दुख परम पौ जासी, जन नानक नाम लय ता जीवे, जो चात्रिक जल पिए तृप्तासी। सारग महला चौथा, जप मन श्री राम, राम रमत राम सत सत राम, बोलो भैया सद राम राम, राम रब रिहा सर्वगे रहाओ, राम आपो आप आपे सब करता, राम आपे आप सब जग सप्त जगे जिस आप

उपमा देखो, हर संतो जो भगत जना की पत राख है, विच काल जुग अगे जन नानक का अंग किया मेरा राम राय। दुश्मन दूख गए सब पगे, सारंग महला पंचमा चौपदे कर पहला, एक को अंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर मूरत कौबल जाओ, अंतर प्यास चात्रक जो जल की सफल दर्शन कद पाओ। रहाओ अनाथा को नाथ सर्व प्रतिपालक, भगत वचल हर नाओ, जाको कोई न राखे प्राणी तिस तू दे असराओ। निद्रया तार

साधन का संग साध स्यो गोष्ट हर साधन स्यो लिवलाऊ जन नानक पाया है गुरमत हर देहो दर्श मन चाओ सारग महला पंजमा हर जियो अंतर जामी जान करत बुराई मानुख ते छपाई साखी भूत पवान रहाओ वैष्णो नाम करत खट कर्मा अंतर लोभ जुठाना जुठान संत सभा की निंदा करते डूबे सब अज्ञान करे सोम पाक हिरहे

संध्या काल कहे सब वर्ता जियो सफरी दम्पान प्रभु पुलाए उबड़ पाए नेफल सब कर मान सो ज्ञानी सो बैसनो पढ़िया जिस करी कृपा भगवान ऊन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल

बिरहाव क्वार कन्या जैसे संग सहेरी प्रिय बचन उपहास कहो जो सुरजन गृह पीतर आयो तब मुख काज लजो ज्यो कन को कोठारी चढ़ियो कबरो होत फिरो जब ते सुद पे है बारे तब ते थान फिरो जो दिन रैन तौ लो भी बजो मूरत करी पलो बजावन हारो ऊठ सुधारो तब फिर बाज न पहयो जैसे कुंभ उदक पूर आन्यो तब उहो पिन दृष्टो कह नानक कुंभ जले मह डार्यो अंबे अब अंब मिलो सारग महला पांजमा अब पूछे क्या कहा।

सब मन तन अर्प्यो शीश चरण पर राख्यो चरण वंदना अमोल दासरो देऊ साध संगत अरदार्यो करो कृपा मोहे प्रभु मिलावो निमख दर्श पिखाग्यो दृष्ट परी तब पीतर आयो मेरा मन अंदन सित लाग्यो कहो नानक रस मंगल गाए शबद अनाहद बाजो सारग महला पांचमा माई सत सत सत हर सत सत सत सादा वचन गुरु जो पूरे कहयो मैं चीक गांठरी बादा रहाओ निसबासर नखतर बनासी रब ससियर बेनादा गर्भ सुदा जल पवन जाग्यो एक साध वचन अटलादा आंड बिनासी जेर बिनासी उत्पज सेत बिनादा चार बिनासी खठै बिनासी एक साध वचन नह चलादा राज बिनासी ताम बिनासी सातक पी बेनादा दृष्ट मान है सगल बिनासी एक साध वचन आगादा आपे आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो न जाई कही पांतरे प्रभ नानक गुर मिल लादा साग महला पांचमा मेरा मन बास वो गुर गोविंद जहां सिमरन पयो है ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाओ जहां बिसरा ठाकुर प्यारो तहां दुख सब आपद जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहां श्रवण हर कथा न सुनिए ते महा पयान ओए दयानंद जहां कीर्तन साध संगत रस तह सगन वास फुलंद बिन सिमरन कोट बरख जीव सगली औद विराथ नाद एक निमख गोविंद भजन

सुख सोयो अर सहज समायो सहसा गुरे गवायो जो चाहत सोई हर कियो मन वांछत फल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो सर्वनी कथा सुनाए चरणी चलो मार्ग ठाकुर कै रचना हर गुण गाए देखो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो लाल अमोल नाम हर छोड़ न कतु जाहे कवन उपमा कौन बढ़ाई क्या गुण कहोर जाए होत कृपाल दीन दया प्रभ जन नानक दास दसाए सार महला पांजमा ओए सुख का स्यो बर्न सुनावत अनद विनोद पेख प्रभ दर्शन मन मंगल गुण गावत रहाओ।

कृपर्ण भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म मरण जाको पयो कृपाल बीठला तन हर हर अजर जर्न हर रसे अगाने सहज समाने मुक्ते नाही जात बर्न गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उदरन

पाल रिजायो रहाओ। संत चरण मोरलो माथा, हमरे मस्तक संत तरे हाथा। साधे मंत्र मोरलो मनुआ, ताते गत हुए त्रै गुनिया। भक्त दर्श देख नैन रंगा, लोभ मोह तुटे परम संगा। कहो नानक सुख सहज अनंदा, खोल पीत मिल।

जप तप संजम पुन सब हुमो तिस अर्प्यो सब सुख जाई। एक निमख प्रिय दर्स दिखावे तिस संतन कै बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई। मान अभिमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई। देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सतगुर पुरख मिलाई। प्रभ रंग दयाल मोह ग्रह मैं पाया जन नानक तप्त बुझाई।

आओ, अनेक जन्म परम तो ही आयो, मानस जन्म दुल पाही, गर्भ जोन छोड़ जाओ नित्यो, तो लागो अनठाही, कहे बुराई ठगाई दिन रैन, निफल कर्म कमाही, कण नाही तो गाहन लागे, ताए ताए दुख पाहे, मिथ्या सांग कूड़ लपटायो, उर्ज पर्यो कुसमाही, धर्म राय जब पक्र सबवरे, तो काल मुखा उठ जाही, सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाही, कह नानक तिन जन बलिहारी, जो अल्प रहे मन माही, सार्ग महला पांजमा, यो जीवन प्रीतम बिन आई बिन माई, जाके बिछरत होत मृत का, ग्रह में रह न पाई रहाओ, जिया हिया प्राण को दाता, जाके संग सहाई, करो कृपा संतो मोहे अपनी, प्रव मंगल गुण गाई, चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बंछाई, जे प्रसाद मिलिया प्रभ नानक, बल बल ताके हो जाई, सार्ग महला पांजमा, हुआ अवसर कह हो बल जाई, आठ पहर अपना प्रभ सिमरन, बड पागी हर पाई रहाओ, पलो कबीर दास दासन को, उत्तम सैन जन नाई, ऊंच ते ऊंच नाम देव समदर्शी, रविदास ठाकुर बन आई, जियो पिंड तन तन साधन का, एहो मन संत गनाई, संत प्रताप परम सब नासे, नानक मिले गुसाई, सारग महला पांचवा मनोरथ, मनोरथ पूरे सतगुर आप, सगल पदारथ सिमरन जाके, आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ, अमृत नाम स्वामी तेरा, जो पीवे तिस ही तृप्तास, जन्म जन्म के किल बखनास है, आगे दरगह होए खलास, शरण तुम्हारी आयो, करते पार ब्रह्म पूरन अभिनाश, कर कृपा तेरे चरण प्यावो, नानक मंतन दर्स प्यास, सारग महला पांचवा का तीजा, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, मन कहाँ लुपाइये आन को, ईत ऊत प्रभ सदा सहाई जी, संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर ई है अकावन पान को, अकाल मूरत है साध संतन की ठाहर, निकी ध्यान को, वाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारन, मान को खोज लहो ना।

भोजन बह बिंजन तन त्यो दृष्ट ना करे गुर चांगे हर रस चाहे प्रिय प्रिय मुख तेरे जो अल कमला लो पांगे गुण निधान मन मोहन लालन सुखदाई सर्वांगे गुरु नानक।

गुण गाए बिनती सब अभिमानी रहो तार अनुग्रहो अपने कर लेनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्व सुख आनंद घरेरे ठाकर दर्स त्यानी निकट वर्तन सा सदा सुहागन दहद स्थाई जानी प्रिय रंग राती नारायण नानक पुष्कर बानी। सारंग महला पंजमा तो चरण आसरो ईस तुम्हें पछानू साख तुम्हें संग्राखन हार तुम्हें जगदीश रो तू हमरो हम तुमरे कही है तो तुम ही राखे तू बे अंतर अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है बिन बकने बिन कहन कहावर अंतर जामी जान जाको मेल लय प्रभ नानक सोज अंदर गह माने। सारंग महला पंजमा चौप दे कर पंजमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर पज आन करम बेकार मान मोहना बुझ तृष्णा काल ग्रस संसार गाओ खात पीवत हस्त सोवत औद तिति आसार नरक उधर प्रमत जल तो मैं कीनी सार प्रभ द्रोह करत बेकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुर पूज नाही हम सो मां अंधार बिख ठगौरी काय मूठो चित न सिरजन हार गोविंद गुप्त होय हे न्यारो मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जो नानक शरण आयो गोपाल पुरख अपा। सारंग महला पंजवा कर छेवा पड़ताल ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी विकार देख री विचार गुर शब्द त्याय महल पाए हर संग रंग करती महा केल रहो सुपने ही संसार मिथनी विस्तार सखी काय मो मोहनी प्रिय प्रेम हृदय मेर सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदा ही दियार काय आन आन रुचिए हर संग संग खचिए तो साध संग पाए कौ नानक हर ते आए अब रहे जमै मेर। सारंग महला पंजमा कांचना बहुदत करा भूमदन अर्प तरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे राम तुल मन चरण कमल लागे रहो चार वेद जह पने अस अष्ट खष्ट श्रवण सुने नहीं तोल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे परत सोध सौच चार क्रिया कुंट निराहार परस करत पाक सार निबड़ी कर्म बय विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल न लागे राम दयार सुन दीन बेनती दे दर्स नैन पे को जन नानक नाम मिष्ट लागे। सारंग महला पंजमा राम राम राम जप रमत राम सहाई रहो संतन के चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुर गोपाल भय कृपाल लब्द अपनी पाई बिनसे भरम मोह अटूटे माया के बंद पूर्ण सुरत्र ठाकर मैं को बराए स्वामी सो प्रसन्न पै जन्म मरण दोख वे संतन के चरण लाग नानक गुण गाई। सारंग महला पंजमा हर हरे हर मुखो बोल हर हरे मन तारे रहो श्रवण सुन भगत करण अनक पातक पुनः चरण शरण परण साधु आन बान बिसारे हर चरण प्रीत नीत नीत पावना मह महापनीत सेव पै दूर करन कलमल दुख जारे कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते राम राम सार भूत नानक तत् विचारे। सारंग महला पंजमा नाम भगत माग संत्याग सबकू सगल कामी रो प्रीत लाए हर ध्यान गुरु गोविंद सदा गाए हर जन कीरे इन पांछ दीन हार स्वामी सर्व कुशल सुख विश्राम आनंदा आनंद नाम जमकी कुछ नाही तै सिमरत अंतर जामी एक शरण गोविंद चरण संसार सगल ताप हर रूप नाव रूप साध संग नानक पार ग्रामी। सारंग महला पंजमा गुण लाल गावो गुर देखे पंच जना ते एक छूटा जो साध संग पर रो रहो दिष्टियो संग कस न जाए बान त्याग मोहा एक हर प्रीत लाई मिल साध संग सोहा पायो है गुण निधान सगल आस पूरी नानक मन आनंद पाए गुर बिखम गार तोरी। सौरंग महला पंजमा मन बैरागे की खोज दरसा रहो साधु संतन सेव कै प्रियो हीरे ते आयो आनंद रूपी पे के हो मेहर पाओगी काम करी सब त्याग के हो शरण परोगी नानक स्वामी घर मिले हो गुर मनाओगी। सारंग महला पंजमा ऐसी हो परी जानते दे आर रो मातर पितर त्या के मन संतन पै बिच आयो जात जन्म कुल खोइए हो गाओ हर हरी लोक कुटुंब ते टूटिए प्रभ किरत किरत करी गुरमो को उपदेशिया नानक सेव एक हरी। सारंग महला पंजमा लाल लाल मोहन गोपाल तू कीट हस्त पखान जंत सरम मैं प्रतपाल तू रहो न दूर पूर हजूर संगे सुंदर रसाल तू नह वरण वरण है कुला कुल नानक प्रभु।

संत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गड़बड़ हत्या कमाए संत पापी पाप असंत मूरे आर करे सुधाए संत मलेच मल पाए असंत निंदक करे पा नानक नीच कह मारे न जावा जो तुझ पावे।

निर्भौ निर्वै अकाल मूर्त अजुनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी।

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख कल वंख पापी पाप अशंख मूर यार करे फुराए अशंख मलेच मल पाखाए अशंख निंदक करे नानक नीच कह मारे न जामा के जो तुम पावे सही फलि कर सदा सदा अशंख नाम संत नाम राम राम संत दो असंत कहें कृपा।

समुद्र शास्त्रता इडी तुलनावणी अंत न सुनी कहना अंत न करना देना अंत न देखना सुनना अंत

ताप निर्भौ निर्वै अकाल मूरत अजुनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक।

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख कल वाय संख पापी पाप असंख मूर यार करे फिराए संख मलेच मार पाए असंख निंदक करे पा नानक नीच कह मर न जावा दे जो कुछ पावे सही सही पाए सदा सदा संत नाम संत नाम गाम गाम संत दो असंत कहें सिर्फ।

दूजे जिसनो नजर करे गुरबिन दाता कोई नाही बख्शे नजर करे से गुरमिनिया सांत उपजे अंतन नाम ले मेरे मन हार अमृत नाम त्याए सतगुर पुरख मिले नाम पाई यार नाम में सदा त्याए समाए रहाओ मन सदा बिछड़े फिरे कोई न किसी नार हमें वड्डा रोग है सिर मारे जमकाल गुरमत सत्संगत न विछड़े अंदर नाम समाल सबना करता एक तू नित कार देखा विचार एक गुरमुख आप मलाया बक्से भक्त भंडार तू आपे सबके जानदा किसे आगे करी पुकार हर हर नाम अमृत है नदरी पाया जाए आंदन हर हर उचरै गुर का सह सुभाए नानक नाम निदान है नामे ही चित लाए मलार महला तीजा गुर सलाई सदा सुखदाता राव नारायण सोई गुर प्रसाद परम पद पाया वडी वडियाई होई आंदन गुण गावै निसाचे सच मावै सोई मन दे गुरमुख हृदय विचारी गुरमुख हृदय विचार ताज कूड कुटंब होम बिख तृष्णा चलन हृदय समाल रहाओ सतगुर दाता राम नाम का होर दाता कोई नाही जी दान दे तृप्ता से सच्चे नाम समाही अंदन हरार हर अव्यार देअंतर सह समाद लगाही सतगुर सब दी मन पे दिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभा लख न जाही लख्या गुरमुख कत कहा

ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही माए समाया साचे ही सच साच पतीजे विचों आप गवाया एको एक वसै मन स्वामी दूजा वर्ण कोई एको नाम अमृत है मीठा जग निर्मल ससोई नानक नाम प्रभु ते पाईया नानक नाम प्रभु ते पाईया जिन को तुर लिखिया होई मलार महला तीजा गणगंधर नमे सब उदरे गुर का सब विचार होमे मार साध मन विसाया रख्या वरदार जिसे बजाए सोई बूझे जिसनो आपे लय मलाए अंदन बाणी सब देगा।

अमर जन्म कदे ना बूझे बिष्टा माय समाये गुरमुख नाम रते से उदरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम ते आया हर रख्या उतार मन तन निर्मल निर्मल मत उत्तम उत्तम बाणी होई एको पुरख एक प्रभ जाता दूजा वरना कोई।